0: एट नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना गे, शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना गे, मालिक जो महबूब मोहम्मद को ने के खातूर।

इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जने पढ़ू था दरूद सजन से पान दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाज फरमाते हैं, ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाज फरमाते

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
2: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां खिदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
7: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
8: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
9: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
8: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
10: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وان كذبوك اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو فقل لي عملي ولكم عملكم تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون تم بری الذمہ ہو اس سے جو میں عمل کر رہا ہوں اور میں بری ہوں بیزار ہوں اس سے جو تم عمل کر رہے ہو ایمان کے رستے پر چلنے کے لیے یہ ایک بہترین جواب ہے اس معاشرے کے لیے جو انسان کو دین پر عمل نہ کرنے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے لوگ مخالفت کر رہے تھے آپ کی بات سننا نہ چاہتے تھے تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میجورٹی کیا کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے اور کس طرف کو جا رہی ہے تو مجھے بھی اسی طرف چل پڑنا چاہیے کیونکہ آج ہماری سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ ہم میجورٹی کے دین پر ہیں لو اتنے زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی پیچھے چل پڑیں تو پھر بات تو وہیں آ گئی نا عقل اور شعور استعمال نہیں کیا اپنا حقیقی نفع نقصان نہیں دیکھا ہم کیا کرتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی وہی پہنو جو سب پہنتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ وہ دین کے تقاضے پورے کرتا ہے کہ نہیں ویسے ہی رہو جیسے سب رہتے ہیں خواہ وہ اللہ کی نافرمانی میں جی رہے ہیں یا فرما برداری میں جی رہے ہیں انداز طور طریقے سلیقے سب کچھ کس کے مطابق ہے؟ لوگوں کے دین کے مطابق. ایک مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی.

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ताहिर शाह ऐं सीनियर रजिस्ट्रार गानी डॉक्टर निगार नवाज, एसोसिएट प्रोफेसर पेडाट्रिक्स डॉक्टर सादिया रियाज, असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान बे मोतल, चार्ज नर्स नसरीन ऐं लेडी हेल्थ सिक्योरिटी स्टाफ मारिया के फौरी तौर ते पिम्स जे एडमिन पोल में रिपोर्ट करण जूं हिदायतूं। डॉक्टर निजात यासमीन पिम्स जे चिल्ड्रेन वार्डन जे ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकरर, डॉक्टर अल्ताफ हुसैन के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी चार्ज ॾिनी वई, डॉक्टर शुमैल आहेडा फगाइनी मुकरर।
2: रिपोर्ट आएगी तो सब पता चल जाएगा, सारा रिपोर्ट
3: के इंतजार। आपके रिजाइन का भी मुतालबा किया गया था, आप क्या कहेंगे?
2: वो जो है वो वजीर आजम से पूछे कि मेरे रिजाइन का क्या हुआ है।
3: आपने एक रिजाइन दिया भी है, इस हवाले से भी कुछ इतलात है, आपने रिजाइन को कर
2: दिया? रिपोर्ट आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा।
1: मुझी इस्तीफा बाबत वजीर आजम का पूछो वे सेहत वारो वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल जो साथी वजीर तारिक फजल चौधरी से गड पिम्साने जो दौरो। तारिक फजल चौधरी चे तो पिम्साने की जांच रिपोर्ट में सामू इंदड़न खिलाफ कार्रवाई भी थी। पीपल्स पार्टी पिम्साने की जांच रिपोर्ट पदरी करण जो मुतालबो कर छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे पीपल्स पार्टी सेनेटर पलोशा खान है तो सभी जो गठजोड़ है, शफाफ जांच कि लगे तो नंडन आफिसर मथा मलबो किराए वो, वडन आफिसरन के कुछ न थींदो। साने जो शायदियूं मिटाइण जी कोशिश थी रही आहे। पिम्स के टिन सालन दौरान 22 अरब रुपया मिलिया, पैसा किथे लॻा, कीअं खर्च थिया, ऑडिट कराई वञे। वफ़ाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक पारां पिम्स जे हवाले सां नाकामियुनि जो एतिराज़, मुल्की निज़ाम खे बि ॿिटे मयार वारो करार ॾेई छॾियो। तकरीब ख़िताब कंदे मुसद्दिक मलिक चयो त कंहिं बि सियासतदान जा ॿार पिम्स में इलाज कराइण नथा वञनि, न ई कंहिं सियासतदान जा ॿार सरकारी स्कूलनि में पढ़नि था। हिन फ़र्क़ जे ख़ात्मे ते निज़ाम ठीक न थींदो।
4: ये शहरी में इल्तफा इस वजह से है कि भाई सब इसमें आर्थर हो गए। ये इल्तफा के बाद जाहिर है फिर बहस मुबासा होगा और फिर ये बात आगे चलेगी।
5: सो बहस असा इन करे चाहूं था तो हर सिंध जो मानू जो है इन मामले से गालो अहम मामलो है। असा चाहूं था सिंध जा मानू बुधन है उनके असा टेक्निकली तौर पर असि मंडे को अची वरी इन रेजोल्यूशन भी पास कंदे।
1: पीपल्स पार्टी पारा नवन सूबन ए यूनिट्स से बहस लाए सिंध असेंबली में पेश कल रिथ दिफा इवान मारगो विरांगे खिलाफ ठहराव भी मंजूर कराने जो ऐलान। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह है तो सिंध असेंबली पे भी शबेरा ठहराव पास कर चुकी है। रिथ आने जो मकसद भी मामले से गालण है। मोहम्मद अली मलकानी तो नवन सूबन से बहस जो मकसद मौको पेश कर सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ ठहराव भी पास कर वो। मुल्की मईशत मुस्तहकम थी चुकी है। महंगाई भी 3% मां घटजी सिंगल डिजिट ते पहुती है। मुआशी इस्तेहकाम बाद हुकूमत जो हाणे ध्यान तरक्की ते आहे। लंडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी खिताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो त व्याज जी शरह 22% मां घटि थी 11% ते थी वई आहे। आम माण्हूअ जी आमदनीअ में बि वाधि थी आहे। खिते में बि पाकिस्तान अहम किरदारु हासिल करे चुको आहे। कुंभ भरसा गोठ मोहम्मद लायक बंबरो वासी नौजवान गुलबार बंबरो पुरसरार नमूने फोत वारसन जो लाश रखी थाने अडो धरणो एहतजाज। मुखालफन मथा नौजवान के जहर डेई कतल करण जो इल्ज़ाम वारसन जो चवण आहे त गुलबार बंबरो खे 3 ॾींहं अॻु सुल्तान नज़र राजपुर ऐं ॿिया ज़बरदस्ती वठी विया, जिन ॾेती लेतीअ जे मामले तां गुलबार खे ज़हर ॾेई राणीपुर में फिटो करे छॾियो। असां नौजवान खे गिम्स अस्पताल दाख़िल करायो जिते हू फोत थी वियो। रहीम यार खान में पुलिस पारां मुक़ाबले में बडवारी मारण जी दावा। पुलिस मूजिबि रहीम यार खान जे खानपुर में काइनात बीबीअ जे क़तल केस में नामज़द जवाबदारनि जी मौजूदगीअ जे इतलात।

0: ये जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
1: किसी दूसरे के नाम पर जायदाद खरीदना एक संगीन जुर्म है जिसे बेनामी ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये जुर्म कई शक्लों में हो सकता है, मुलाजमीन या रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट्स, जायदाद या कारोबार बनाना या फिर फर्जी अफराद के नाम इस्तेमाल करना। याद रखिए, कानून की नज़र में बेनामीदार और असल मालिक दोनों मुजरिम हैं। बेनामी कानून के तहत जायदाद जब्त, भारी जुर्माना और 7 साल तक कैद हो सकती है। बेनामी जायदाद की इत्तला अपने करीबी FBI दफ्तर में दें। इत्तला देने वाले का नाम सीगा-ए-राज में रखा जाएगा।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो

0: इलाज कंदी। याद रखंदा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वने थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलन जी मोबाइल नंबर 810-31-43-842।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: क्या वहाँ पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331-252-5786।
3: जी हाँ 331-552-786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़न जे सूर, पुठन जी तकलीफ़, कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़न, पुठन, कुल्हन ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: अक्सर वालदेन जो इहो चवण हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशख़बरी, खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
9: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
9: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-252-5786।
9: जी हा, 2315-25-786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: प्लांट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी वारस अली ऐं हेड ऑफ गायनी डॉक्टर नौशीला अमजद, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मुतायर शाह ऐं सीनियर रजिस्ट्रार गायनी डॉक्टर निगार नवाज, एसोसिएट प्रोफेसर पीडा थ्रेक्स डॉक्टर सादिया रियाज ऐं असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान बे मोतल, चार्ज नर्स नसरीन ऐं लेडी सिक्योरिटी स्टाफ मारिया खे फौरी तौर ते पिम्स जे एडमिन पोल में रिपोर्ट करण जूं हिदायतूं। डॉक्टर नुज़रत यासमीन पिम्स जे चिल्ड्रन वार्ड जे ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुक़रर। डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन खे ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी चार्ज ॾिनी वई। डॉक्टर शुमैला हेड ऑफ गायनी मुक़रर। ईरानी सदर चयो आहे त याददाश्त इस्लामाबाद नामे ते अमल दरामद सां ॾुखियाइनि ते कंट्रोल करे सघे थो। मुआदे ते अमल करण अमरीका ऐं इसराइल खे खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करण सां रोके सघे थो। ईरान जंग नथो चाहे, नई धमकियुनि ऐं दॿाउ सबब झुकंदो, कंहिं बि जारियत जो पूरी ताक़त सां जवाब ॾींदासीं। आलमी बिरादरी खिते में शिकताण घटाइण में किरदार अदा करे। नोन इलाक़ाई मुआहिदनि ऐं इंतज़ामनि सां पाड़ेसरी मुस्लिम मुल्कनि जो पंहिंजे सलाहियतुनि ते भाण जी शुरूआत थी चुकी आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालीबाब चयो आहे त इलाक़ाई सिक्योरिटी मुस्लिम मुल्कनि विच में सहकार ऐं ख़्वाहिश जे बुनियाद ते थियणु घुर्जे। मुस्लिम पाड़ेसरीनि खे दुश्मननि बदिरां सहकार ऐं भाईचारो इख़्तियार करणो घुर्जे। इफ्तिखार गिलानीअ खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण पार्टी क़यादत ऐं नवाज़ शरीफ़ जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म जे मशीर राणा सना अला चयो आहे त इफ्तिखार गिलानीअ खे वज़ीर आज़म बणाइण में कंहिं सां नाइंसाफ़ी न आहे थी। आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म चूंडण पार्टीअ लाइ ॾुखियो फ़ैसिलो ज़रूरु हो, पर पार्टी क़यादत हिन मामले में कंहिं सां नाइंसाफ़ी न कई आहे। उॿावड़ो भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में नौजवान क़तल। ॻोठ लांगो में हथियारबंदनि फायरिंग करे ॿनीअ ते कमु कंदड़ लियाकत मलक खे क़तल करे छॾियो। लाश ज़रूरी कार्रवाई बदवार सां हवाले। रहीम यार खान में पुलिस पारां मुक़ाबले में बडोहारी मारण जी दावा। पुलिस मूजिब रहीम यार खान जे खानपुर में काइनात बीबीअ जे क़तल केस में नामज़द जवाबदारनि जी मौजूदगीअ जे इतलाह ते छापो आयो त जवाबदारनि फायरिंग कई। पुलिस जी जवाबी फायरिंग सबबि जवाबदार हसनैन अला ॾिठो जमाली मारिजी विया। ऐं नेपाल आयल बोट जे नतीजे में फौतियुनि जो अंगु वधी 734 थी वियो। 2000 खां वधीक माण्हू अञा बि गुम। तिब्बत में बि 7 ॼणनि जे फौत थियण जी तसदीक। 554 बदस्तूर गुम। भारत बि नेपाल में 320 भारतीय शहरनि जे गुम हुअण जी तसदीक करे छॾी। नेपाली इख़्तियारनि मूजिब गुम थियल माण्हुनि जे ॻोल्हा वारो सिलसिलो जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबब न बणंदो।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो। मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
5: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूदु। हिकु मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718

0: जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-32-41-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
0: छा आप पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहा आयो?
1: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 03125252786।
1: जी हा, 2315-25-786।
0: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन था, असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन तवरी बेहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए, तेंदो आसान जवाब यो हुआ, ये बार भी असां वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए, ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताईं जितरा भी बार आए, उन्होंने के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
3: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GAFM 90.4।

वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो जी कैसे हैं, सुबह का सलाम मेरा आपको बहुत चाहिए। तो जी कैसे हैं और कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे किस किस ने ज्वाइन कर लिया है? और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि आज है इतवार का दिन, जैसा कि हम लोग पूरा कर रहे होते हैं 7 दिन वेट सिर्फ एक इतवार के आने का, ताकि आपकी और मेरी बात हो सके। जी आपकी प्यारी सी आवाज के साथ, अपनी प्यारी सी आवाज के साथ आपके साथ मौजूद है। आज एक बार फिर मौजूद है 2 घंटे के लिए आपके साथ देने वाली है, आपसे बातें चलने वाली है और आपकी सारी परेशानियों को सुन के उनका हल निकालने वाली है। ओके जी, तो जी सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने मुझे ज्वाइन कर लेना है। मुझे ज्वाइन करने के साथ आपने क्या करना है, सबसे पहले परेशान नहीं होना कि आपने मुझे टाइप कैसे करना है, मैसेज कैसे टाइप करना है, सेंड कैसे करना है, मुझे ज्वाइन कैसे करना है, मेरे सवाल को सुनना कैसे है। तो मैं आपको बताऊं कि आपने मुझे ज्वाइन करने के लिए आपने सबसे पहले परेशान नहीं होना, मोबाइल उठाना और टाइप करना 8881 पे SKR लिख के अपना नाम और अपने प्यारे से शहर का नाम आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। और जो मुझे लाइव फेसबुक से सुनना चाहता है, फेसबुक को ज्वाइन करने के लिए आपने फेसबुक को ऑन कर लेना है और वहां पर जाके GFM88 सर्च करना। जैसे ही आपको मेरे नाम का फ्लैट दिख जाता है विदाजी सना के नाम से, तो आपने वहां पर जाके मुझे कमेंट करना है और कमेंट करने के साथ साथ मुझे बताना है कि आप मुझे कहां से सुन रहे हैं और कब से सुन रहे हैं और मेरा शो कैसा लगता है आपको। जो मैं सवाल करूंगी उसका जवाब भी देना है और जवाब देने के साथ साथ आपने मुझे अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी जरूर बताना है, ताकि जो है ना अगर आपका जवाब ठीक होगा तो मैं आपका ऑटोमेटिक सॉन्ग प्ले हो जाएगा, और अगर आपका जवाब ठीक नहीं होगा तो वो सॉन्ग माजर के साथ प्ले नहीं हो सकता। तो ऐसे ही है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपने मुझे 12 बजे से पहले पहले ही जवाब देना होता है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर देती हूँ, थोड़ा बढ़ा देते हैं टाइम, ताकि आप लोग थोड़ा सोच ले समझ ले उसके बाद ही। तो अपनी तबीयत बताइएगा जरूर, आप लोग सारे के सारे कैसे हैं और कहाँ से सुन रहे हैं और कौन कौन अभी ड्राइविंग पर मौजूद है, ड्राइविंग पे FM कौन कौन सुन रहा है, जरा मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे साथ मौजूद कौन कौन है।

0: इट्स 11:30 AM दिस टाइम चेक
1: और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में
2: रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
6: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
10: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
11: ख़ुशख़बरी, पैंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुनातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अजा मुस्तफा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं बार जो न थियण बांझपन।
8: डॉक्टर अजा मुस्तफा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीजन जो इलाज कंदी। याद रखंदा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
12: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
13: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
10: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
13: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
10: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
13: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
13: 0331-252-5786।
10: जी हाँ 231-5525-786
13: GFM रेडियो नेटवर्क
10: सिंध जो आवाज़।

और साथ में कहते हैं दो खासियत देखनी हो तो इस दो खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सबर देखना हो तो उस पर तनकीद करके देख लो, और खलूस देखना हो तो उससे मशवरा करके देख लो। वाह, बहुत अच्छा आपने एक सुबह का पैगाम दिया है हम सबको, और ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा कॉल आपने भेजा है नजीर खोसो। ऐसी रहता से दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और मेरा शो सुनते रहें, और मुझे हमेशा ऐसे ज्वाइन करते रहें क्योंकि आप और मेरा साथ हमेशा के लिए हमेशा दो घंटे के लिए ही होता है। इतवार इतवार आप और मेरी बात होती है जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं, आओ बात करें में हम लोग साथ होते हैं। ओनली ओनली ऑन सैटरडे संडे, सॉरी संडे क्योंकि सैटरडे तो यार मेरे पास था एक, लेकिन फिर मैंने कहा यार क्या करें, थोड़े बिजी होने की वजह से, तो फिर मैंने कहा संडे संडे ठीक है, आप लोग सारी बातें जमा कर लो, और क्योंकि फिर ऐसे होते हैं कि यार आप लोग सारी बातें अगर एक दिन में करते दूसरे दिन के लिए, वो आप लोग कहते हो कि अभी कौन सी ऐसी बात बताएं, तो जब मुझे ना पता चल जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने सारी सारी सारी सारी जमा करके रख लेनी होती है और मुझे इतवार वाले दिन बतानी होती है। पूछोगी तो सही में आप लोगों से, ये तो ऐसा नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो हमें ज्वाइन करते हैं मसरूर अहमद ने, आज भी हमेशा की तरह सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है, और कहते हैं कि कराची से मसरूर अहमद आर जी सुना जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो माशाल्लाह, जबरदस्त शो एंड खूबसूरत आवाज एंड अंदाज, थैंक यू सो मच मसरूर अहमद। और यही आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप टाइमली मुझे ज्वाइन करते हैं और मेरे शो को सुनते हैं, ऑफिस में हो, घर पे हो, जहां पर भी हो, आप मुझे ज्वाइनली टाइमली करते हैं, तो ऐसे ही आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब भी टाइमली दे देना है, और अपने साथ में पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी बता देना है क्योंकि आपके पसंदीदा सिंगर का सॉन्ग तो मैं वैसे ही प्ले करूंगी, तो अगर आप सॉन्ग भी बता देंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा। तो जी यहाँ पर देख लेते हैं कि मेरा जो सवाल है कौन कौन रेडी बैठा है मेरे सवाल सुनने के लिए। ओके जी, तो मैं अपना सवाल बताऊंगी और सवा बार तक आप लोगों से इसका जवाब ले लूंगी। तो जी मेरा सवाल आप लोगों से ये कि आपने मुझे बताना है कि क्या आप बता सकते हैं कि हमारी नाक का साइज जो होता है, नोज जो होती है हमारी, तो वो हमारी बॉडी के किस हिस्से के बराबर होती है, किस बॉडी पार्ट के बराबर होती है, हमारी बॉडी में किस हिस्से के बराबर होती है। ओके, तो जी आपने मुझे बताना है इसका जवाब सवा बारह तक, क्योंकि सवा बारह तक अगर मैं आपसे जवाब लूंगी आपके सॉन्ग के नाम आएंगे, सॉन्ग के नाम आएंगे, अगर जवाब ठीक होगा तो आपका सॉन्ग प्ले भी तो करना है ना भाई, मतलब सॉन्ग भी तो सुन ले। तो जी ये सवाल कर चुकी हूँ मैं आप लोगों से, जिसने मेरा सवाल सुन लिया है तो जवाब देती नहीं सुनो तो सवाल रिपीट कर देती हूँ। सवाल मेरा ये कि आपको बताना है कि जो हमारी नोज है, हमारी जो नाक का साइज है, वो हमारे जिस्म के, हमारी बॉडी के किस हिस्से के बराबर होता है, तो जाइए पता लगाइए और मुझे बताइए। तो यहाँ पर सुनते हैं एक हम फैजा अली की आवाज में खूबसूरत सा सॉन्ग, क्योंकि जब तक हम इनकी आवाज में एक सॉन्ग नहीं सुनते तो हमारी सुबह नहीं होती। करते हैं इस सॉन्ग को प्ले रहेगा मेरे साथ।

पीछे हट मेरी बात मान, गाय की शोभा मेरा लगे चार चांद, फ्लेक्स नहीं बचे स्टेट करूँ फैक्ट्स में, अकेला काफी में नहीं चाहिए मुझे चार पांच फीट ले, तू जितने मर्जी फीट ले।

मैं आप लोगों से अपने सवाल का जवाब ले लूंगी और उसके बाद मैं अपने पसंद का सॉन्ग चलाना शुरू कर दूंगी। फिर नहीं कहिएगा कि भाई आपने मेरे पसंद का सॉन्ग नहीं चलाया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके फेवरेट सॉन्ग प्ले हो जाते हैं। शर्त यही है कि अगर आपका जवाब ठीक होगा।

इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप लोग मुझे बताएं कि यार गर्मी तो बहुत है और गर्मी में ज्यादा जो हम लोग एसी यूज कर रहे होते हैं एसी यार आप लोग इसी वजह से पता है क्या नुकसान होते हैं। हर चीज का फायदा भी है तो नुकसान भी है। अगर आप सारा सारा दिन एसी में बैठे रहते हो तो आप गर्मी में जाते हो तो आपका काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपकी बॉडी कह रही होती है कि यार मैंने जब एक टाइम तक अपने ऊपर ऑब्जर्व किया तो उसके बाद यार मैं क्यों जाऊं बाहर गर्मी में काम करूं, मेरी बॉडी इजाजत नहीं दे रही होती। तो ऐसे ही होता है, लेकिन जो अल्लाह तआला की हवा चल रही होती है बाहर, चाहे गर्मी हो या कुछ भी हो, तो अगर आपको धूप में भी अल्लाह तआला की हवा मिल रही है तो आप वो जाके लिया करें बनिस्बत इस एसी के। हर एक जरूरत के अलावा आप घर से बाहर भी मत जाया करें, और घर में रहने का मकसद ये भी नहीं कि सारा सारा दिन आप एसी में रहा करें, आप पंखे में बैठा करें। और जिसके घर में वैसे कुदरती हवा आ रही होती है तो वो तो एक बात ही अलग है भाई, कुदरती की हवा की बात वाकई बहुत अलग है। क्योंकि जब आप लोगों को पता चलता है कि जो बाहर की हवाएं जो अल्लाह तआला ने चलाई हुई होती है वो आपकी बॉडी को फ्रेश करती है और ताजा रखती है, बिल्कुल आप काम करने का दिल भी करता है आपका और एक्टिव रहता है इंसान। लेकिन जो एसी होती है, एसी की ठंडक होती है वो मसले ही होती है, इंसानों की बनाई हुई होती है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग जो अगर काम करने का दिल भी कर रहा था तो एसी में जाने के बाद आपका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, ये आप लोग जाके आजमा भी सकते हैं और अगले सवाल का आप लोग मुझे बता भी सकते हैं। वैसे ये एक सवाल भी है कि आप लोग जाएंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे और अगले सवाल का मुझे जरूर बताइएगा कि ऐसे ही कि जो अल्लाह तआला की जो हवा है हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें जाके बैठते हैं, खेलते हैं, फिरते हैं, जो भी है, तो वो हमें ताजा रखती है, कभी थकाती नहीं है और मायूस नहीं होने देती, जो भी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप एसी में बैठ जाते हो और एसी में बैठने के बाद आपको काम करने का भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, तो ये चीजें आप लोग नोट भी करिएगा, मुझे बताइएगा भी, क्योंकि मैंने नोट किया है इसलिए मैंने आपको बताइए कि इस चीज से बचने के लिए आप लोग क्या करना है। एसी में एसी को कम यूज करना है, लेकिन बिना फालतू घर से बाहर नहीं जाना। घर में रहने का मकसद ये भी नहीं कि आपने एसी में बैठना, पंखे को यूज करें, पंखे के नीचे बैठे और साथ में अल्लाह तआला की जो हवा आती है वो जाती है, आप विंडोज खोलें, दरवाजा खोलें, वहां की हवा इस्तेमाल करें। यार आप लोगों को पता चलेगा कि जिंदगी असल है क्या, गर्मी है तो क्या हुआ, अल्लाह तआला ने हवा भी तो चलाई होती है ना, नहीं चल रही होती आप ठीक है बैठ जाओ, ये भी नहीं कि एसी में बैठो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको कम कर देना है तो आपकी सेहत वगैरह जो भी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्व की भी बात है और क्या बोलते हैं अप्लाई की भी बात है अपने ऊपर, तो मैंने ये चीज करके देखी है।

इसके अलावा मेरे पास एक और सॉन्ग है जो कि अलन फकीर का सॉन्ग हमारे पास है, जो कि रेमिक्स सॉन्ग है, सूफी वाइब जिसमें आती है। तो हम लोग इतना सारा सॉन्ग सुन रहे थे, सूफी वाइब भी हम लोग सुनेंगे और तेरे इश्क में जो भी, ये हम लोग सुनते हैं अलन फकीर की आवाज में। तो जी मैं करती हूँ प्ले और उसको प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद करेंगे तो आपके लोगों का सवाल का जवाब लूंगे आप लोगों से। ओके जी, तो सुनते हैं यहाँ पर, रविगा मेरे साथ करें, मेरे साथ एंजॉय सूफी वाइब।

दुखीअ में गाॾी बारूदी सिरिंग सां टकराइजी वई, टे ॿार फोत, हिकु ज़ख़्मी। SSP जो चवणु आहे त दुखीअ जे इलाइक़े लूनी कली बख़्तियार में गाॾी बारूदी सिरिंग सां टकराइजण सबबि टे ॿार फोत थी विया, जॾहिं त हिकु ज़ख़्मी थी पियो। इतलाह ते पुलिस इलाइक़े खे घेरे में आणे छॾियो, सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। ईरानी सदर चयो आहे त इस्लामाबाद यादाश नामे ते अमल दरामद सां ॾुखियाईनि ते कंट्रोल करे सघिजे थो। मुआदे ते अमल करण सां अमरीका ऐं इसराइल खे खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करण सां रोके सघिजे थो। ईरान जंग नथो चाहे, नई धमकियुनि ऐं दॿाउ सबबि झुकंदो, कंहिं बि जारियत जो पूरी ताक़त सां जवाब ॾींदासीं। आलमी बिरादरी खिते में शिकत आण घटाइण में किरदार अदा करे। नवनि इलाक़ाई मुआदनि ऐं इंतज़ाम सां पाड़ेसरी मुस्लिम मुल्कनि जो पंहिंजे सलाहियतुनि ते भाण जी शुरूआत थी चुकी आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबाब चयो आहे त इलाक़ाई सिक्योरिटी मुस्लिम मुल्कनि विच में सहकार ऐं ख़्वाह जी बुनियाद ते थियणु घुर्जे। मुस्लिम पाड़ेसरीनि खे दुश्मननि बदिरां सहकार ऐं भाईचारो इख़्तियार करणु घुर्जे। इफ्तिखार गिलानीअ खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण पार्टी क़यादत ऐं नवाज़ शरीफ़ जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाला चयो त इफ्तिखार गिलानी खे वज़ीर आज़म में कंहिं सां नाइंसाफ़ी न आहे थी। आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म चूंडण पार्टीअ लाइ ॾुखियो फ़ैसिलो ज़रूरु हो, पर पार्टी क़यादत हिन मामले में कंहिं सां नाइंसाफ़ी न कई आहे। उॿावड़ो भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में नौजवान क़तल, ॻोठ लांगो में हथियारबंदनि फायरिंग करे ॿनीअ ते कम कंदड़ लियाकत मल खे क़तल करे छॾियो। लाश ज़रूरी कार्यवाही बाद वारसनि हवाले। रहीम यार खान में पुलिस पारां मुबैना मुक़ाबले में ॿ ॾुहारी मारण जी दावा। पुलिस मूजिबि रहीम यार खान जे खानपुर में काइनात बीबीअ जे क़तल केस में नामज़द जवाबदारनि जी मौजूदगीअ जे इतलाह ते छापो हयो त जवाबदारनि फायरिंग करे ॾिनी। पुलिस जी जवाबी फायरिंग सबबि जवाबदार हसनैन ऐं अलह ॾितो जमाली मारिजी विया।

0: मटियारी भरसा कौमी शाहराह ते ट्रक ऐं ट्रालर जे टकर में ॿ ॼणा फोत, चार ॼणा ज़ख़्मी। हादसे जे नतीजे में सजाद अली समेत ॿ ॼणा फोत थी विया। दिल मुराद ऐं मोहम्मद अब्बास समेत चार ॼणा ज़ख़्मी। फोतनि ऐं ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। अठहठि मोरीअ में आबाद घरनि जो वाटर कोर्स बंदि करण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो। छोटकी गुजरावा जे आबाद घरनि वाटर कोर्स बंदि करण ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। आबाद घरनि चयो आहे त आबपाशी खातो रिश्वत न ॾियण तां वाटर कोर्स बंदि कराए छॾियो आहे। 4 लख रुपया रिश्वत घुरी रहियो आहे। वाटर कोर्स खोलाए परेशानियुनि खे ख़तमु कयो वञे। गाज़ी अहमद जे शौकत कॉलोनीअ में रहवासियुनि जो गंदे पाणी निकाल न कराइण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो। मुज़ाहिरीन चयो त नालनि जी सफ़ाई न थियण करे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जनम वरितो आहे। नालनि जो गंदो पाणी घरनि ऐं घिटियुनि में पीअण सबबि मच्छरनि जो आज़ार वधी वियो आहे। गंदो पाणी फौरी तौर ते निकाल करायो वञे। ऐं नेपाल आयल बोट जे नतीजे में फोतियुनि जो अंगु वधी 724 थी वियो। 2000 खां वधीक माण्हू अञा बि गुम। तिब्बत में बि 7 ॼणनि जी फोत थियण जी तसदीक। 554 बदस्तूर गुम। भारत बि नेपाल में 320 भारतीय शहरनि जे गुम हुअण जी तसदीक करे छॾी। नेपाली इख़्तियारनि मूजिबि गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा वारो सिलसिलो जारी आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: हाल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली। खुशखबरी
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।
7: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
8: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
8: जी हा, 2315525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की, जाने वाले चले जाते हैं, किस्मत ही तो काबू में नहीं आती, छाओं में धूप की तरह, जिस्म में रूह की तरह, गुजरे दिमाग से याद तेरी लगातार लहू की तरह, अब खाए जाए ये दरो दीवार मुझे किसी भूख की तरह, तेरे बिना नहीं घर भी घर, अकेले महसूस ये किया, तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला, खिजा भी आई बर वक्त और दिल का बाग भी रहा ना हरा, तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना, तू मुझ में देखे इंसान बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला।

0: यहाँ डालते हैं, हम सिरहाने रख के ख्वाब रातें जागते हैं, हम तुम्हें तुमसे बहुत बेहतर जानते हैं।
1: सरगोशी में लूं नाम तेरा,
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ। आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
6: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो

और उसके अलावा मैं बताऊं कि यहाँ पर जो मुझे मेरे सवाल का जवाब देते हैं, सवाल का जवाब देते हुए मेरे पास कमेंट आते हैं, कहते हैं कि अच्छा मशहूर अहमद हमें जवाब देते हुए कहते हैं कि द आंसर टू द क्वेश्चन सना जी, द लेंथ ऑफ अ पर्सन नोज इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर थंब। जी बिल्कुल, और मतलब कहते हैं कि जो आपका नाक का जो नोज का जो हमारा साइज होता है वो आपके जो हाथों का अंगूठा होता है उसके बराबर होता है। ओके, आपके सवाल का जवाब मेरे पास आ गया, लेकिन आपने मुझे अपना पसंदीदा सॉन्ग का नाम नहीं बताया। नाम भी बताते अगर आपका जवाब ठीक था तो आपका सॉन्ग प्ले हो जाता, लेकिन आपने नाम नहीं बताया। अभी टाइम है, आप मुझे टाइम के साथ साथ अपने सॉन्ग का नाम बता सकते हैं। और इसके अलावा इकबाल लशारी भी मुझे मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि विलेज सोनू खान लशारी मीरपुर खास से सुन रहे हैं, कहते हैं कि बाजी सना सवाल का जवाब है नोज का साइज फिंगर से मिलता है। ओके जी, आपने भी अपने सॉन्ग का नाम मुझे नहीं बताया, अगर आप भी अपना नाम बता देते अगर आपका जवाब ठीक होता तो हम जरूर प्ले कर देते। मैंने सबके आप लोगों के जो भी जवाब है मतलब कुछ हमने रीड आउट कर दिए हैं, रख दिए हैं सामने, लेकिन जब सॉन्ग प्ले होगा तो आप लोग समझ जाएगा कि किसका जवाब ठीक था। और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मेरी शौकत अली, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी मिजाज है। और शौकत शर्म पुरानी मीरपुर खास से कैसी है आरजे साहिबा, अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन सुबह आमीन। और साथ में कहते हैं कि भाई साथ में कहते हैं कि भाई साथ में मैं आपको बता दूं कि भाई वालेकुम सलाम, और मैं वैसे तो ठीक हूँ, थोड़ा थोड़ा सा बुखार चल रहा है जो कि काफी टाइम से डेढ़ तो मंथ हो गए हैं और ये प्रॉपर नहीं जा रहा। और इसके अलावा कि आपने मुझे ज्वाइन किया, मेरी शौकत अली शायद आपने मुझे आज ही ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है। ऐसे ही आपने मुझे हर तवर को सुनते रहना है, ज्वाइन करते रहना है, मुझसे बात करते रहनी है और मुझे बर्दाश्त करते रहना जैसा कि मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। ऐसे ही नई नई मजाक कर रही हूँ भाई। और इसके अलावा मैं बताऊँ कि बहुत अच्छा लगा, मेरी शौकत अच्छी आपने रिजल्ट करते रहे ऑनली ओनली ऑन संडे। दिल की बात, खुशी की बात, हर बात क्या होती है, आओ बात करने में रहते हैं आप और मेरे साथ पूरे दो घंटे के लिए। तो ऐसे ही हरिद्वार में भी आप आपका इंतजार किया करूंगी, ऐसे ही आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है। और इसके अलावा जो मैंने सॉन्ग का नाम पूछा था मसरूर अहमद ने मुझे जवाब दिया है सॉन्ग का, वो कहते हैं कि जी शमन अली मिराली की आवाज में आप मुझे सॉन्ग प्ले कर दे दिल हुई सच्ची। ओके जी, जरूर हम लोग आपका सॉन्ग जरूर प्ले करेंगे अगर आपका जवाब ठीक है तो। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी चलिए यहाँ पर एक और मेरे पास सॉन्ग है, तो क्यों ना मैं वो सॉन्ग प्ले करती हूँ और सुनते हैं। अच्छा ये तो सॉन्ग है, ये है नसीबोलाल की आवाज, ये मेरी पसंद का सॉन्ग है, सुना मैंने कभी नहीं है, लेकिन मैं आपको पता है कोई भी न्यू सॉन्ग होता है तो हमेशा आपके साथ सुनती हूँ और इंजॉय भी आपके साथ ही आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम प्ले करते हैं और सुनते हैं सॉन्ग को।

तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग नसीबोलाल की आवाज में था यार। तो जी यकीनन आप लोगों ने भी सुना होगा और यकीनन आप लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा अगर आपको उसका मतलब पता है तो, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर ये जो है अगर आप कोई भी सॉन्ग सुनते तो आप लोगों के साथ सुनते, कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं है जो आप लोगों के बिना मैंने सुना हो। कोई भी फर्स्ट टाइम ऐसा सॉन्ग होता है तो हमेशा आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के साथ ही मैं सुना करती हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अभी जो है अभी हमें किसने जवाब दिया है। अच्छा अब्दुल रजाक हमें कहते हैं कि सवाल का जवाब ये सॉन्ग फौजिया साइज फिंगर, अच्छा सवाल का जवाब है। और फौजिया सुमरो तो की वसर लाए जानी मुखे जमानो इंदिया लगन दो, अच्छा कहते हैं फौजिया सुमरो का ये सॉन्ग आप प्ले करते हैं। जी जरूर, और आपने जो मुझे जवाब दिया है वो कहते हैं कि आपके हाथ के जो उंगलियां होती है उसके बराबर आपके नोज का साइज होता है। ओके जी ठीक है, आपका सॉन्ग भी जरूर प्ले करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर टाइम अभी थोड़ी देर में ही हमारे पास होगा, छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस आएंगे फौरन से, जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। अच्छा जी, और लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोगों के जो जवाब है वो मिलते जुलते हैं किसी किसी के, लेकिन बिल्कुल मैच भी नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आपके टाइमली हम लोग यहाँ पर सॉन्ग प्ले कर सके, तो जरूर जरूर करेंगे हम लोग आप लोगों के सॉन्ग प्ले। और इसके अलावा जिसने मेरे साथ शो को ज्वाइन कर लिया है और मेरे पेज को अभी तक लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया और शेयर नहीं किया, तो जाके पहले से जाके कमेंट करें, शेयर करें और मुझे बताएंगे मैं सत्कर्म करने मौजूद हूँ। अच्छा जिसने मेरा सवाल नहीं सुना, और सवाल मेरा यही है कि जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया, सवाल मैं आपको रिपीट कर दूं कि सवाल मेरा ये कि आप लोगों ने बताना है कि जो हमारी नाक है, जो हमारी नोज है, उसका साइज हमारी बॉडी के पार्ट के मतलब हमारे जिस्म के कौन से हिस्से के बराबर होता है। जाके आपने जल्दी से बताना है मुझे ताकि मैं आपके पसंद का सॉन्ग प्ले कर सकूं, ताकि आप भी सुने और आपके साथ मैं भी सुने, मेरे साथ सारे लिस्नर सारे मिलकर सुन लें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सॉन्ग को भी सारे लोग एंजॉय करें तो जाके जल्दी से जवाब दीजिए और अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी साथ में टाइप करके बताइए मुझे। तो यहाँ पर मैं कर दूंगी प्ले क्योंकि टाइम वैसे ही है हमारे पास, सिर्फ आधा घंटा रहता है।

0: जी जैसे कि अगर मेरे सवाल को सुन लिया होगा और जवाब भी आप लोगों के पास आ गया होगा, तो यहाँ पर चाहूंगी आप लोग रेडी हैं, लेकिन अभी हम जाएंगे छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, और जैसे ही ब्रेक से जाएंगे वापस आएंगे, वापस आके करूंगे मैं आपके सॉन्ग को प्ले, और तब तक आप लोग मुझे मेरे सवाल का जवाब दे देना है और चाय शाय कर कब उठाना है और पीना है, मुझे भी साथ में बताना है कि आप लोग चाय भी पी रहे हैं, कार भी चला रहे हैं, घर में बैठे हुए सो रहे हैं, ऑफिस है या किसी और काम से बाहर गए हुए हैं और मेरे एफएम को सुन रहे हैं, तो ये जरूर एक्टिविटी बताने की किस तरीके से आप लोग मेरे एफएम को सुन रहे हैं। अच्छा, जो मेरा सवाल था कि आपने मेरे पर्सनैलिटी के बारे में बताना था कि आप लोग किस क्वालिटी की वजह से मुझे ज्वाइन करते हैं, सुनते हैं, और ऐसा क्या चीज है जो अच्छी लगती है आपको, तो आप मुझे जाके बताना है। यहाँ पर चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरह।
1: It's 12:30 p.m. This soundtrack is brought to you.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात।

0: बवासीर कोरस, बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाए आज़मूदा कोरस, निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंध, हर आचर ते सुबुह जो 9 बजे का शाम जो 5 बजे ताई, हमजा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते के लिए फोन करियो 0302-36-36-879 और 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद और सेहतमंद जिंदगी दां कदम।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अक्सर मान जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन 10 साल तीन छो थी डी वे तो असटे बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उनके अलावा असानी एरिया हाई रिस्क आ ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेरे तक वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके तो रेशो 10 साल का घट आ तेरे असो रिक्वेस्ट आए तो सभी के बूस्टर डोज लगे
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: ख़ुशख़बरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे

अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दादू भरसा चांडिया बिरादरी के बिन धुरन में जेड़ो बिन भायरन समेत पंज जना कतल जडे त वाटाड़ू औरत जख्मी कचे के गोट दानो चांडियो में चांडिया बिरादरी के बिन धुरन विच में जेड़ो थी पियो गोलियों लगन सबब भायर दीदार ए गुलबार चांडियो थड़े ते कतल वतनी चांडियो ए बचल बीमार जी वया पुलिस मूजिब चारई लाश दादू अस्पताल आंदा विया आहिनि धुरन में चैन कलाकन का फायरिंग की डेवट जो सिलसिलो हलंदड़ दादू मोरो रोड से ट्रैफिक मुतासर इलाके में शिकतान सबब खौफ ए हिरास पकड़ियल ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के विच ओभर के मुल्क का अमरीका ए इसराइल खिलाफ मुतहद थियण की अपील ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई पांजे बयान में चयो आए त इस्लामी कौमन के मसले जो हल कलमे के इताअत दोस्ती भला के राह में सहकार करण आए दुश्मन सजी दुनिया में मुसलमानन में वेशा पैदा करण की कोशिश कर रो है विच ओभर जहा मुल्क पांजे हकीकी दुश्मन के सुणी उन मनसूबा समझन ए मुकाबलो कन वजीर आजम के हुकुम से पिम्स साने के जिम्मेवार खिलाफ एक्शन शुरू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत आम अहदेदार मुअतल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर शुरुआती तौर से 120 दिन मुअतल एनआईसीएच इस्लामाबाद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान जो खिदमतों पिम्स हवाले डेपुटेशन से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स मुकर्रर ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी वारिस अली रजा हेड ऑफ गायनी वार्ड डॉक्टर नौशीला अमजद डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर आशा सीनियर रजिस्ट्रार गायनी वार्ड निगार नवाज एसोसिएट प्रोफेसर पीडा डॉक्टर सादिया रिजिया असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान बिन मोतल चार्ज नर्स नसरीन लेडी सिक्योरिटी स्टाफ मारिया के फौरी तौर से पिम्स के एडमिन पोल में रिपोर्ट करण की हिदायतों डॉक्टर नुजत यासमीन पिम्स के चिल्ड्रन वार्डन के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तौर मुकर्रर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज दिनी वही डॉक्टर शुमैला हेड ऑफ गायनी वार्ड मुकर्रर पाकिस्तान तुर्क ए सऊदी गडियल सलामती ए दिफा लाइ मुतहद आहिन वजीर आजम शहबाज शरीफ जो तुर्क के सदर ए अवाम के योम फतह के मौके से पैगाम वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो त 30 अगस्त गाजी मुस्तफा कमाल तुर्क की क्यादत में तारीखी फतह की याद दियारे तो पाकिस्तान तुर्की अवाम से गड जुरत ए कौमी इज्जत के फख्र जो मीरास से हेठा पेश क्यूं था।

रहंदी सिरिंग मां टकराइजी वई। टे ॿार फौत, हिकु ज़ख़्मी। एस एस पी जो चवण आहे त दुखी जे इलाइक़े लोनकली बख्तियार में गाॾी बारूदी सिरिंग सां टकराइजण सबबि टे ॿार फौत थी विया, जॾहिं त हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। इतलाउ ते पुलिस इलाइक़े खे घेरे में आणे सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो आहे। ईरानी सदर चयो आहे त इस्लामाबाद यादाश नामे ते अमल दरामद सां ॾुखियाइनि ते कंट्रोल करे सघिजे थो। मुआदे ते अमल करण सां अमरीका ऐं इसराइल खे खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करण सां रोके सघिजे थो। ईरान जंग नथो चाहे, नई धमकियुनि ऐं दबाउ सबबि झुकंदो। कंहिं बि जारियत जो पूरी ताक़त सां जवाब ॾींदासीं। आलमी बिरादरी खिते में शिकतण घटाइण में किरदार अदा करे। नवनि इलाक़ाई मामलनि ऐं इंतिज़ामनि सां पाड़ेसरी मुस्लिम मुल्कनि जो पंहिंजे सलाहियतनि ते भाड़ण जी शुरूआत थी चुकी आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबाब चयो आहे त इलाक़ाई सिक्योरिटी मुस्लिम मुल्कनि विच में सहकार ऐं ख़्वाह जे बुनियाद ते थियणु घुर्जे।

0: पाकिस्तान
1: कैसा नाइन साहब न कही आए उबावड़ो भरसा हथियार बंदन जी फायरिंग में नौजवान कतल गोट लांगो में हथियार बंदन फायरिंग करे बनिए ते कम कंदर लियाकत मलक के कतल करे छो लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले रहीम यार खान में पुलिस पारां मुक़ाबले में बडुहारी मारण जी दावा पुलिस मूजिब रहीम यार खान जे खानपुर में कायनात बीबीअ जे क़त्ल केस में नामज़द जवाबदारनि जी मौजूदगीअ जे इतलाउ ते छापो आयो त जवाबदारनि फायरिंग कई पुलिस जी जवाबी फायरिंग सबबि जवाबदार हसनैन अलह ॾिठो जमाली मारिजी विया मटियारी भरिसां क़ौमी शाहराह ते ट्रक ऐं ट्रालर जे टकर में ॿ ॼणा फौत चार ॼणा ज़ख़्मी हादसे जे नतीजे में सजाद अली समेत ॿ ॼणा फौत थी विया दिल मुराद मोहम्मद अब्बास समेत चार ॼणा ज़ख़्मी फौतिन ऐं ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़ सीने जी जलन खटियूं उगरायूं बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे शिफ़ाए मैदा

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-200।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: ख़ुशख़बरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
7: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
8: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ

0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125257866।
0: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

ऊपर 440 उल्की स्माइल लाने का काम करेगी भाईजान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत ही खूबसूरत सी नाद के साथ। तो बहुत प्यारी सी नाद प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुनते हैं, उसके बाद जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेट पर प्रोग्राम चलती का नाम मस्ती।

क्या बात है, मतलब क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और इसी के साथ साथ आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नमस्ते, आकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, और जरा आपने होने का एहसास दिलाएंगे, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ जरा आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है उसकी जाने भी आ जाते हैं, क्योंकि टॉपिक प्रोग्राम में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर आज के सवाल की बात की जाए, तो मेरा आज से जो सवाल होगा प्रोग्राम में आप लोगों से पूछने के लिए, वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप मुझे बताइए जरा, आजकल मेरा दिल कर रहा है कि इंसानों की फितरत के बारे में आप लोगों से जरा सवाल पूछूं, ताकि आप लोग भी जरा मुझे सही सही जवाब बताएं और मैं सही सही जान सकूं कि वाकई जो मेरे दिमाग में ये थॉट्स हैं, जो ये थोड़ी सी चीजें मतलब दिमाग में ऐसे घूमती रहती है ना, तो उनका जो सही हल है वो क्या हो सकता है। और इसी के साथ साथ ये एक सवाल मेरे जहन में आ चुका था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछ ही लेते हैं, ताकि मुझे पता चले कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। तो सवाल कुछ इस तरह है कि आप मुझे बताएं कि एक इंसान जब कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या वाकई उसे फर्क नहीं पड़ता, या सिर्फ ये कहने की बातें होती हैं? ओके जी, सवाल कुछ यूं है कि आपने मुझे बताना है कि एक इंसान जब कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बताएं जरा क्या वाकई उसे फर्क नहीं पड़ता, या बस ये कहने की बातें होती हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो ऐसे कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881। आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो फेसबुक पेज है जीए लाड़काना FM 88.8। अगर आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। जल्दी से पेज पर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक किया करें और शेयर कर दें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग हमारे साथ फेसबुक पर भी मौजूद हैं। ओके जनाब, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और फेसबुक की पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, और मुझे बताइए आप भी हमारे साथ साथ और प्रोग्राम सुन रहे हैं, और साथ ही साथ टॉपिक पर आप क्या क्या कहना है ये जरा आप मुझे जरूर बताइएगा। तो मेरा आप लोगों से सवाल बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताइए कि एक इंसान जब कहता है ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या वाकई उसे फर्क नहीं पड़ता, या बस ये सिर्फ कहने की बातें होती है? जल्दी से बताइए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। टाइम हुआ है जी, लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि वापस आकर आप लोगों के लिए अच्छे से गाने लगाएंगे और आप लोगों के मैसेजेस रीड आउट करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88.8। आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए।

0: It's 1:30 p.m.
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
5: खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
6: अवांजे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अघ मौजूद आहे।
6: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
10: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा जुड़ा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
7: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
9: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
9: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
7: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाण लाए
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 0331252576
9: जी हाँ 2315 5786
7: GFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

It's time to commercial. करते जाएंगे तो जो लोग तो जनाब बिल्कुल मैसेज कीजिए, लेकिन साथ साथ टॉपिक को लाजमी फॉलो किया करें, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो टॉपिक अगर देखा जाए, आप लोगों को नहीं मालूम कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या है, क्योंकि आपने अभी अभी सुना है, स्टार्ट किया। तो आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि एक इंसान जब कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या वाकई उसे फर्क नहीं पड़ता या फिर ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। ओके जी, जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और बताइए आप हमारे साथ। और उसके अलावा बाकी जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं, वो पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमारे साथ फेसबुक पर भी मौजूद हैं। ओके जनाब, तो यहाँ पर आप लोगों के साथ बातें करेंगे और आपके मैसेजेस हैं जो कि मुझे काफी तादाद में रिसीव हो चुके हैं, तो मैसेजेस की जाने बिल्कुल आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके पसंद के गाने मौजूद हैं तो साथ साथ जरा हम गाने भी सुनते रहेंगे। वैसे तो एक बात आ ही जाती है कि जब गाने सुने तो अच्छा अच्छा म्यूजिक होना चाहिए, ताकि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें तो भाई ये चीज तो होनी चाहिए। वैसे भी बहुत से लोग हमारे साथ जितने भी मौजूद होते हैं, उनका ये कहना होता है कि भाई आप प्रोग्राम में गाने अच्छे लगाते हैं, तो मुझे वाकई यही लगता है कि प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो म्यूजिक का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि म्यूजिक अच्छा होगा तो बाकी सारी चीजें वैसे ही अच्छी हो जाती है। तो म्यूजिक का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा वाला जरूरी है। और इसी के साथ साथ अगर आप भी फरमाइश करें तो कोशिश ये किया करें कि आप जो गाना मुझे सेंड कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे प्रोग्राम के टेम्पो को खराब ना करे और हमारे प्रोग्राम के जरा मतलब समझ रहे हैं कि मैच का होना चाहिए। ओके जी, बिल्कुल, बाकी आप लोगों की फरमाइशें लगाई जाती हैं जी प्रोग्राम में, बिल्कुल आप सब लोगों के गाने सुने जाते हैं, मजे मजे के गाने, और कुल मिलाकर आप लोगों के लिए प्रोग्राम पेश किया जाता है।

ना तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर ये वाला गाना हम जरा लिस्ट में लगा लेते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत गाना होने वाला है। ये ज़ीशान रुकड़ी की आवाज में गाना है, तो आइए जरा मिलकर एंजॉय करते हैं। और साथ साथ आप क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस की जाने भी आते हैं, लेकिन आप जरा टॉपिक को फॉलो कीजिए और मुझे बताएं, जब एक इंसान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या वाकई उसे फर्क नहीं पड़ता? हाँ बताएं तो जरा, पता तो चले।

इलाहाबाद है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय करें। और साथ ही साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, चलती गाना मस्ती आगे सिद्धराव के साथ मौजूद है। ओके जी, फर्ज करें अगर ऐसा हो जाए आप एटीएम से पैसे निकालने जाएं, 1000 निकालने पर आपको 2000 मिले, और अगर आप 2000 निकालें तो आपको 4000 मिले, अगर ऐसा वाला सीन बन जाए तो सोच रहे हैं क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसा हो चुका है। मिस्र के एक शहर में रहने वाले एक इंसान ने अपने एटीएम से, यानी करीबी उसके एक एटीएम था, वहां वो गया और उसने 1000 जो ना वो निकाला। 1000 निकालते साथ ही उसको 2000 जो है ना वो मिल गए। तो उसने सोचा है ये कोई मतलब गलती तो नहीं हो गई मुझसे, क्योंकि जाहिर बात है उसने पहली मरतबा वो किया था, तो उसको लगा ये मेरी गलती है जिस वजह से मुझे 2000 मिले। तो उसने दोबारा ट्राई किया, दोबारा ट्राई करने पर उसने 2000 की जो ना वो 2000 निकालने की कोशिश की तो उसको 4000 मिल गए। तो उसको बात समझ आ गई कि भाई जान ये कोई तो मसला है। तो उसने वो पैसे लिए, वो गया जाने के, छोटा सा गांव था ना, तो छोटे से गांव में वो बात इतनी तेजी से फैल गई, सारे लोगों को पता चल गया कि इस वाले एटीएम से जो ना पैसे अगर आप निकालते तो वो डबल होकर आपको मिलते हैं। तो भाई क्या, बिल्कुल हमारी सोच जैसी है, वहां सारे लोग ही चले गए एटीएम से पैसे निकालने लगे। और एक इंसान ने तो ऐसा काम किया कि उसने बहुत ज्यादा रकम निकाली, और बहुत ज्यादा रकम निकालने की वजह से यही हुआ कि उसको डबल पैसे मिल गए। और जब ये चीज बैंक वालों को पता चली तो फिर उन्होंने यही देखा कि भाई एटीएम में जो था ना वो थोड़ा टेक्निकल इशू था, जिस वजह से एटीएम जो है वो डबल पैसे लोगों को दे रहा था। तब उन्होंने जाहिर सी बात है एटीएम को मतलब ठीक करने के लिए भेज दिया, और एटीएम वो उन्होंने सोचा कि भाई इसको तो एटीएम को चलाना ही नहीं है, दोबारा बंद कर दिया हमेशा के लिए। बाकी लोगों से गुजारिश की कि जिनको डबल पैसे मिले हैं वो काइंडली मेहरबानी करके वो पैसे वापस दे जाए। और बाकी तो ये वाला सीन अगर आप सोच लें कि हमारे यहाँ हो जाए तो क्या लोग वापस वो पैसे करेंगे या नहीं। वैसे उन्होंने किए, उन्होंने वापस वो पैसे किए जो उनको डबल मिले थे। लेकिन हाँ, अगर ये बात यहाँ हो जाए और यहाँ पर ऐसा कोई सीन हो जाए तो क्या आपको लगता है कि लोग पैसे वापस करेंगे? मुझे नहीं लगता, लेकिन बिल्कुल इस तरह की चीजें भी

क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय कर रहे हो। शादी सासराव के मैसेजेस की जाने भी आ जाते हैं जो कि भाई मुझे मिलते जा रहे हैं। आप बोलेंगे कि भाई सिद्रा आप हमारे मैसेजेस तो पढ़ी नहीं रही है, तो बिल्कुल आपके सिद्रा के मैसेजेस की जाने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक गाना लगाया है जो कि अफशान सेब की आवाज में होने वाला है। इस गाने की फरमाइश हमें किसने करी है बताते हैं, रुको जरा सब्र करो। ओके जी, तो ये हमारे साथ ही चाचा खाले जुने जो कहते हैं खाले जुने जो है विद बेस्ट विशेस फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? ठीक ठाक है चाचा। और कश्मीर से अखलाक बलोच हमारे साथ कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, हाय सिद्रा नाइस यू, थैंक यू वेरी मच अखलाक प्यारे भाई। और फहीम शेख हमारे साथ कहते हैं अदा छाला सफा खुश प्ले तो भली दिल रुबा नाज कर देर कर जामिन अली जी आवाज में डेडिकेट यू मी रियली ओके थैंक यू। अच्छा उनके अलावा हमारे साथ कश्मीर से जुबेदा बलोच, हाय सिद्रा हाय भाभी कहती है प्लीज प्ले दिलदार मेदा सोना और डेडिकेट आपके हस्बैंड यानी कि अखलाक भाई को जाता है। तो आइए जरा ये प्यारा सा गाना सुनते हैं, वरना भाभी बोलेगी हाँ सिद्रा मुझो गानो हलाए तो गाल याद अच्छी हो गाना तो बोले नहीं कौन। सो चलो गानो बदूंगा।

क्या बात है जी, भाभी की चॉइस की, कितना अच्छा गाना देखो अपने शोहर मियां जी को डेडिकेट किया है। और अखलाक भाई कहते यो एटीएम का थे या बाज को हथ में यो मिस्र में हुयो पर हाने जेको ना उनके खत्म कयो वयो आ उनके सील कयो वयो ते मानो न मा फायदो न हटे ता हाने ते बैठा हो जो चुप करे ता जो ने जो कोई हाने फायदो ना है। अच्छा चाचा खाले तमाम गाने की फरमाइश कई बिल्कुल जी तमाम जी पसंद जो गानों भी हलायो वेंदो। और ये हमारे साथ विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी बाजी सदरा कैसी है पूरे महीने के बाद आके शो में शामिल हो रहे हैं। हमें शेला गुल का गाना सुनाना, शेला गुल का अगर ये वाला गाना मुझे नहीं मिला जो आपने बोला है तो हम कोई भी शेला गुल का अच्छा सा गाना लिस्ट में लगा लेंगे, ठीक है, जो आपको डेडिकेट जाएगा। और कहते हैं आपकी मेहरबानी होगी, थैंक यू। और डेडिकेट किया है ड्राइवर नजीर सोलंगी, मुदस्सिर सोलंगी, मुबशिर सोलंगी, आसिफ सोलंगी एंड आसिम सोलंगी जी नारे। ओके जी, सब भाइयों को वेलकम कहते हैं। और सर हमारे साथ यहाँ पर आसिम कहते हैं फ्रॉम लाड़काना, हाय आप एक ऐसी हो टॉपिक ये कहने की बातें हैं फर्क पड़ता है। अच्छा

अच्छा अब बात समझ आए दिलदार सोना क्यों है, क्योंकि उसको झुमके भी चाहिए और उसको पता नहीं क्या क्या चाहिए, तो इस वजह से जाहिर सी बात है दिलदार को सोना तो कहना ही पड़ेगा ना, वरना वो कैसे लेकर देंगे। यस यू वेरी चालाक भाभी। ओके जी, बहुत ही अच्छा गाना जो कि हमने एंजॉय किया। एक और गाना हमारी लिस्ट में है जो कि शमन मिराल की आवाज में होने वाला है। इस गाने की फरमाइश हमें किसने करी है बताते हैं जी। हमारे साथ ही गोट मोहम्मद तैयब थे, वो कहा हबीबुल्ला थे, वो भाई कहते हैं सॉन्ग बुधराई जो। ओके ही वारो गानो तमहा भाग डेडिकेट आए, सो तमाशा से गड़ मौजूद है ताकि चौथा भली करी आया गाना एंजॉय कर।

0: टॉपिक में फॉलो करते जा रहे हैं। मेरे यहाँ आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि एक इंसान जब कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तो क्या वाकई उसे फर्क नहीं पड़ता या बस ये कहने की बातें होती है। और हमारे साथ चाचा खालिद कहते हैं बेटा जिदो बहुत फर्क पड़ता है, आप मुझसे रूठ जाओ तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। ये सब कहने की बातें है। इंसान ऊपर और ऊपर से कहता है अंदर से टूट जाता है। योर टॉपिक आंसर क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन। और कश्मीर से अखलाक भाई लिखते हैं कि आंसर फर्क कैसे नहीं पड़ता, अंदर में बाय लगी वेंदो आहे वरी चवंदो आ मुखे फर्क कोई ना ही पड़ता। फर्क पड़ता है, चले जी सुठी गाल, फर्क पवे तो बेहतर आ ही ना। और फहीम भाई लिखते हैं कि दादा टॉपिक जब हम कहते हैं फर्क नहीं पड़ता।
1: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

जे मसले जो हल कलमे जे ताज दोस्ती भलाई जे राह में साकार करण आहे। दुश्मन सॼी दुनिया जे मुसलमाननि में वेछा पैदा करण जी कोशिश करे रहियो आहे। विच ओभर जा मुल्क पंहिंजे हक़ीक़ी दुश्मन खे सुञाणे हुननि जा मनसूबा समझनि ऐं मुक़ाबिलो कनि। वज़ीर आज़म जे हुकुम ते पिम्सानी जे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ एक्शन शुरू। एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर समेत अहम उहिदेदार मुअतल। एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राणा इमरान सिकंदर शुरूआती तौर 120 ॾींहनि लाइ मुअतल। NICH इस्लामाबाद जे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव आफिसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान जो ख़िदमतूं। पिम्स हवाले डेप्यूटेशन ते एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स मुक़रर। ज्वाइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी वारिस अली रज़ा ऐं हेड ऑफ गायनी डॉक्टर नौशीला अमजद। डिप्टी एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मुतायर शाह ऐं सीनियर रजिस्ट्रार गानी डॉक्टर निगार नवाज़। एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स डॉक्टर सहदया रज़िया ऐं असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान बि मुअतल। चार्ज नर्स नसरीन लेडी, सिक्योरिटी स्टाफ मारिया खे फौरी तौर ते पिम्स जे एडमिन पोल में रिपोर्ट करण जूं हिदायतूं। डॉक्टर नुज़रत यासमिन पिम्स जे चिल्ड्रन वार्डन जे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर मुक़ररु। डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन खे जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर जी चार्ज ॾिनी वई। डॉक्टर शुमाइला हेड ऑफ गायनी मुक़ररु।

0: ॿुधाइण जी दावा। पुलिस मूजिबि रहीम यार खान जे खानपुर में काइनात बीबी जे क़तल केस में नामज़द जवाबदारनि जे मौजूदगी जे इतलाउ ते छापो आयूं त जवाबदारनि फायरिंग कई। पुलिस जी जवाबी फायरिंग सबबि जवाबदार हसनैन ऐं अलाह ॾितो जमाली मारिजी विया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
5: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।

0: ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
1: जी हा, 2315-2570-786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चलती गना मस्ती। बिल्कुल जी आपकी सिद्राव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास लाते जा रहे हैं। और इसके अलावा हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में, तो जिन लोगों ने अभी अभी सुनाया स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। उनके अलावा आज मामा का सवाल पूछो हुआ है, सवाल इहो पूछो हुआ है उन माण्डन के बुधायो था जिन माण्डन हाणी हाणी असा के ज्वाइन किया है, तो सवाल कुछ ये है तमा के मुख्य बुधायणो है जेके माण्डू ये चवंदा है तो असा के कोई फर्क नथो पवे अच्छा बाकी उनके फर्क ना पव या बस मिड़े ये गाली हूं जैसे अगलो मानू सिर्फ चई बुधाई है छो तो कुछ मानू बाकी हूं जी सिर्फ गाल हद ती महदूद हूं या वही असा डिठो हों खोड़ मानू अड़ा हूं जिनकी सिर्फ आदत हूं तो इलाही वडी वडी गाल पर यो तो डिपेंड करे तो तुम बुधाइंदा मुख्य तो इन सवाल जो जवाब अगर कोई चवे तो मुख्य फर्क नो पवे बाकी उनके फर्क ना पवो या बस ये सिर्फ गाल ओके जी तुम प्रोग्राम में ज्वाइन करी सको था असा के 888 ते तमा मैसेज करे सको था आई तमा असा के फेसबुक ते बुधी सको था सो पांचो मोबाइल खणो मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वनो टाइप कयो LRK सिंगल स्पेस दियो पांजो पूरो नालो लिखो पूरो मैसेज लिखो आई उनके सेंड करी सजो 888 ते आई जी के अलावा फेसबुक पेज से तुम असा बुधी सो था अगर तुम वट असो रेडियो सही नो हल रेडियो से आवाज सही नो अचे तो तुम के आराम से फेसबुक से इजीली बुधी सो था। ओके जी ये तमाम सहूलतें होती हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग आराम से हमारा प्रोग्राम सुन सके, कोई भी दिक्कत पेश न आए और आप सुकून से हमारे साथ मौजूद रहे। आप लोगों के साथ बातें करते जा रहे हैं, आपके मैसेजेस हैं और आप लोगों के प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, हाँ जी मैसेजेस हैं और प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, तो शामली प्रोग्राम रखेंगे लेकिन जरा गानों की जाने भी आ जाते हैं क्योंकि गाने आप फरमाइश कर देते हैं हमें, तो साथ साथ हम जरा गाने भी सुनते रहेंगे। तो हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना मौजूद है जो कि सनम अब्बासी की आवाज में होने वाला है। अच्छा देखते हैं ये गाना चलेगा या नहीं चलेगा। ओके जी चल गया, तो चलें इस गाने को हम एंजॉय करते हैं। मुझा मिठा ओ मिठा लेट्स एंजॉय।

क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना हम एंजॉय करियो और इसी के साथ साथ जो है ना ये ते ना गाने में करो लव्ज जेको मुके थोड़ो ये लगी वयो जो कल या चीज दाडी आम जाम नजर अचे पई एक्ट्रेस आए ना लाइबा खान जी थोड़ो टाइम पेरिया शादी थी वैसे तो मतलब उनके थोड़ा मानू घर सुणीदा पर शादी का पोए डाडो लाइमलाइन भी अची वई इनके हर को मानू सुणण लगो और शादी का फौरन कुछ टाइम का बाद में ना एकड़ी पोस्ट लगाई मतलब एकड़ो स्टेटस अपलोड कर लिखो हो तो सारी दुनिया मुख्य पसंद कन्दी आहे पर वो मानो मुख्य पसंद न तो करे जैसे मां पसंद कन्दी आहे तो यो एकड़ो यूनिवर्सल प्रॉब्लम आहे चाहे तमाके सारी दुनिया पसंद करे तां सारी दुनिया जा चाहिता हो जो हर कोई तमा सा प्यार कंदो जे पर वो मानो तां सा प्यार ना कंदो जे सा तमा प्यार कंदा हो बिल्कुल जी यूनिवर्सल प्रॉब्लम आहे यो यो बुधी करे डिसी करे अलाए जो खेल लईंदी आहे तॾहिं चवंदा आहिनि त कंहिंसां एतिरो प्यार न कयो जो अगरि हू छॾे वञे या कोई तकलीफ़ ॾे त पोइ वरी तकलीफ़ ज़्यादा तव्हांखे ई थींदी आहे सो बिल्कुलु जी

ॾाढो भलो गानो जेको असां इंजॉय कयूं पिया. हुन खां अलावा तव्हांजा कुझु मैसेजेस आहिनि, मैसेजेस जी तरफ़ बि अचूं था, ॾिसूं केरु केरु आहे, छा छा चओ पिया. अच्छा, ईशा असां सां गॾु मौजूदु आहे. ईशा कहती है फ्रॉम लाड़काना, हाय शोना कैसी हो. अर्ज़ किया है कभी आओ मेरे दिल में अपनी चाह देखने, वापस लौटने का इरादा हम तुम पर छोड़ देंगे. वाह साईं वाह, क्या बातें, कमाल कर दिया. और मकसूद मला हमारे साथ मेहरापुर से कहती आदाब आदाब सदरा मुस्कान. गुड बैकग्राउंड, मुझे शमन का गाना सुनाना, शीशी का था दिल मेरा. और हाँ, शमन तो प्ले हो चुका है, कहते हैं चले अगर वो ना हो सके तो मास्टर मंजूर का सुनाना. ओके, मैं देखती हूँ ये वाला गाना आपके लिए लगा देंगे. बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ. मोरो खान गुलाम सरवर हमारे साथ हैं. बाजी प्लीज प्ले मैडम नूर जहाँ डेडिकेट भूरो खान लाखो एजाज अमानुल्ला विस्तरो जे नाले. ओके भाजी, फरमाइश हलाइण जी फुल कोशिश कयूं था. सो थैंक यू तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे.

0: जो सॉन्ग्स भी तव्हांखे ॾाढी सुठी वाइब ॾेई वेंदा आहिनि.
1: बिल्कुल
0: ॾाढो भलो गानो जेको साइंस जो आहे कयूं पिया प्रोग्राम में तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे. और ये हमारे साथी चाचा खालिद, अगर ऐसा हो जाता तो ये भी चीज एक नोटिस करने वाली है ना कि भाई आके बैंक अकाउंट में इतने पैसे भी तो होने चाहिए ना. हाँ, ये भी सोचे जरा, अकाउंट में पैसे भी तो होने चाहिए जो निकलवाएंगे. और कहते हैं आपका भी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जी, यूनिवर्सल प्रॉब्लम मैंने बोल दिया पहले. और कहते हैं ये सॉन्ग बहुत पुराना गाना है, उसकी कट है. हाँ बिल्कुल जी, पुराना गाना. आज मैंने सोचा पुराने पुराने गाने आपको सुनाते हैं. और कश्मीर से अखलाक भाई कहते हैं FM ते रच छो घटा बैलेंस को नहीं मारन वट लगे ये तो बिल्कुल. ईअं न अॼुकल्ह महांगाई ॾाढी थी वई आहे, सो माण्हू चवनि था बाबा बस प्रोग्राम ॿुधूं था वरी मैसेज कंदासीं त इलाही पैसा ख़र्च थी वेंदा. छो त पैनल ते मैसेज थोरो महांगो पइजी वञे थो न उन्हनि माण्हुनि खे. शाबस आहे ॾिसो चाचो केॾा 20-20, 30-30 मैसेज कंदो आहे. अखलाक भाई तव्हां बि 20-20, 30-30 मैसेज कंदा आहियो. और बाक़ी उहे माण्हू जेके इलाही सारा पैनल ते मैसेज करे छॾींदा आहिनि, तव्हांखे शाबस आहे बाबा. बाक़ी अॼुकल्ह माण्हुनि में हाल कोन अथव, बिल्कुलु इहा ॻाल्हि आहे.

0: गाने जो गयो गाने खां फौरन बाद असन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ वणो था ना खां पोए जल्दी वापस आने मोटी नासे तमा खडी ने जो इते बैठा हो तमा ओही मोटा
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर BFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तेंदो आसान जवाब यो आ, ही बार भी असां वट अल्लाह ताला जी एक वड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखना लाजमी है, जरूरी आए। असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उन्हन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलन

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराकर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

गानो एंजॉय कंदासीं हिते मायरा असां सां गॾु मौजूद आहे. मायरा जो मैसेज आहे, मायरा तव्हांखे चवनि था भली करे आया, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, प्रोग्राम एंजॉय कयो पिया ऐं तव्हां प्रोग्राम जी तारीफ़ कई आहे, सो थैंक यू वेरी मच. और फहीम भाई लिखते हैं कि सर और अखलाक पैनल में ज्यादा करते, ठीक है कल हम चुप करके शो सुनेंगे, SMS नहीं करेंगे. अरे भाई इतनी सी बात पर आप नाराज हो गए, वैसे आपका नाम भी इस लिस्ट में एड है तो आप परेशान मत होइए जरा, और छोटी छोटी बातों पर इतना नाराज नहीं होते, बुरी बात होती है. मकसूद मल्हा, मास्टर मंजूर का गाना बिल्कुल आपने इंजॉय करा होगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. और जी हमारे साथ है विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से, दिलावर हुसैन सोलंगी भाई कहते हैं बाजी आप हमारे गाने नहीं चलाती हैं. अरे भाई आप बोलते हैं शेला गुल का गाना तो लगा देती हूँ, बाकी जो गाना आप फरमाइश करते हैं वो मतलब सही गाना नहीं है. ऐसा होता है ना जैसे कोई जाकर महफिलों में सिंगर्स गाने गाते हैं तो उसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी अजीब सी होती है, उसमें पीछे बैकग्राउंड में भी आवाजें आ रही होती है लोगों की, तो वो वाला गाना है. तो मैं इसीलिए सोचती हूँ कि इस तरह का गाना मैं अपने प्रोग्राम में कैसे लगाऊं, तो इसीलिए मैं वो वाला गाना छोड़कर बाकी और आपके लिए शेला गुल का गाना लगा लेती हूँ. बस बात इतनी है जो थोड़ी सी आप समझ लिया करें.

अच्छा मैं ये बात सोच रही थी अगर आप नाराज हो जाएंगे तो फिर ऐसे प्यारे प्यारे गाने कौन फरमाइश करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। और चाचा कहते हैं हमारे पास इंसान की अहमियत है, पैसा तो आने जाने वाली चीज होती है। यू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी बेटा, इट्स नोटेड। ओके चाचा, ओके थैंक यू। और हैं जी हमारे साथ मोरो खान गुलाम सरवर बाजी, प्लीज प्ले मैडम नूरजहां, डेडिकेट भूरो खान लाखो एजाज अमानुल्लाह विजरो। अच्छा बिल्कुल भाई, आपका गाना मुझे याद था लेकिन थोड़ी सी जो प्लेलिस्ट है ना वो इजाजत नहीं दे रही थी इस गाने की। वैसे ही अगर आप मुझे 5 बजे वाली प्रोग्राम में ज्वाइन करें तो आपका ये गाना हम लगा लेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: चांडिया बिरादरी के बिंदरन में खूनी तकरार बीहर भड़की पियो, बिन भायरन समेत अठ जणा कत्ल, इलाइको जंग जो मैदान बणियल। पुलिस जी वक्त ते न पहुचण सबब वधीक जानी नुकसान थियो। गोठ दानो चांडियो में बिंदरन में फायरिंग सबब अकबर चांडियो, दुर्जा मंजूर, सुल्तान वतनी, बचल हाजन ऐं फिदा चांडियो कत्ल। जॾहिं त खान चांडियो, दुर्जा, ब भाइर दीदार ऐं गुलबार चांडियो मारिजी विया। अठनि ॼणनि जा लाश इस्पताल मुंतकिल। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त इतलाउ बावजूद पुलिस वाके वारे हंधि न पहुती, परे खां ॻोठ खे कड़ो चाढ़ियो वियो। पुलिस वक़्त ते पहुची आहे त एॾो जानी नुक़सान न थियो आहे। पुलिस जे नाली सबबु वॾो नुक़सान थियो आहे। इलाइक़े में अञा ताईं शिकतान जारी आहे, जंहिं सबबु वधीक खून रेज़ी जो ख़र्चो आहे। वज़ीर आज़म जे हुकुम ते पिम्पसाने जे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ एक्शन शुरू। एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर समेत आम उहिदेदार मुअतल। एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राणा इमरान सिकंदर शुरूआती तौर ते 120 ॾींहनि लाइ मुअतल। NICH इस्लामाबाद जे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव आफिसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान जूं ख़िदमतूं पिम्स हवाले। डेप्यूटेशन ते एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स मुक़रर। जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी वारिस अली रज़ा ऐं हेड ऑफ गायनी डॉक्टर नौशीला अमजद। डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मुतायर शाह ऐं सीनियर रजिस्ट्रार गायनी डॉक्टर निगार नवाज। एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स डॉक्टर सादिया रियाज ऐं असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान बि मुअतल। चार्ज नर्स नसरीन ऐं लेडी सिक्योरिटी स्टाफ मारिया खे फौरी तौर ते पिम्स जे एडमिन पोल में रिपोर्ट करण जूं हिदायतूं। डॉक्टर नुज़रत यासमीन पिम्स जे चिल्ड्रन वार्डन जे ज्वाइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर तौरु मुक़रर। डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन खे ज्वाइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर जी चार्ज ॾिनी वई। डॉक्टर शुमैला हेड ऑफ गायनी मुक़रर। ईरान जे सुप्रीम लीडर जे विच ओभर जे मुल्कनि खां अमरीका ऐं इसराइल ख़िलाफ़ मुतहद थियण जी अपील। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज़्तबा ख़ामनाई पंहिंजे बयान में चयो आहे त इस्लामी क़ौमुनि जे मसइले जो हल कलमे जे इताअत, दोस्ती ऐं भलाई जे राह में सहकार करणु आहे। दुश्मन सॼी दुनिया जे मुस्लमाननि में विछा पैदा करण जी कोशिश करे रहियो आहे। विच ओभर जा मुल्क पंहिंजे हक़ीक़ी दुश्मन खे सुञाणनि, उन्हनि जा मनसूबा समुझण जो मुक़ाबिलो कनि। पाकिस्तान, तुर्की ऐं सऊदी गॾियल सलामती ऐं दिफ़ा लाइ मुतहद आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो तुर्की जे सदर ऐं अवाम खे योम फतह ते मौक़े ते पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त 30 अगस्त गाज़ी मुस्तफ़ा तुर्क जे क़यादत में तारीख़ी फतह जी यादि ॾियारे थो। पाकिस्तान तुर्की अवाम सां गॾु जुरत ऐं क़ौमी अज़म जे फ़ख्र जोगी मीराज़ खे भेटा पेश कयूं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उमराह पहुची वियो। ज़रियनि जो चवण आहे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात में मुल्क जी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं थियूं। तुर्कीअ में गाॾी बारूदी सिरिंग सां टकराइजी वई, टे भाइर फोत, हिकु ज़ख़्मी। SSP जो चवण आहे त तुर्कीअ जे इलाइक़े में लूनी कली बख्तियार में गाॾी बारूदी सिंह सां टकराइजण सबबु टे भाइर फोत थी विया ऐं हिकु ज़ख़्मी थी पियो। इतलाउ ते पुलिस इलाइक़े खे घेरे में आणे सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। ईरानी सदर चयो आहे त इस्लामाबाद यादाश नामे ते अमल दरामद सां ॾुखियाईनि ते कंट्रोल करे सघे थो। मुआदे ते अमल करण सां अमरीका ऐं इसराइल खे खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करण खां रोके सघे थो। ईरान जंग नथो चाहे, नई धमकियुनि ऐं दबाउ सबबु झुकंदो। कंहिं बि जारियत जो पूरी ताक़त सां जवाब ॾींदासीं। आलमी बिरादरी खिते में शिकतान घटाइण में किरदारु अदा करे। नवनि इलाक़ाई मुआहिदनि ऐं इंतज़ामनि सां पाड़ेसरी मुस्लिम मुल्कनि जो पंहिंजे सलाहियतुनि ते भाण जी शुरूआति थी चुकी आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाक़िर कालीबाब चयो आहे त इलाक़ाई सिक्योरिटी मुस्लिम मुल्कनि विच में सहकार ऐं ख़्वाहिश जे बुनियाद ते थियणु घुर्जे। मुस्लिम पाड़ेसरीनि खे दुश्मननि बदिरां सहकार ऐं भाईचारो इख़्तियार करणु घुर्जे। इफ्तिखार गिलानी के आजाद कश्मीर जो वजीर आजम बनाए पार्टी क्यादत नवाज शरीफ जो फैसलो वजीर आजम के सलाहकार राणा सनाल इफ्तिखार गिलानी के वजीर आजम बनाए में कैंसा ना इंसाफी ना थी आजाद कश्मीर जो वजीर आजम चूडण पार्टी ला दुख फैसलो जरूर हो पर पार्टी क्यादत इन मामले में कैंसा ना इंसाफी न कई है। हैदराबाद में पोएट्री इट इज अराउंड
0: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। पंहिंजो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। हीउ पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाक़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे हीउ बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर माकी में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली। छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125257 86।
2: जी हा, 3135525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो, त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैडम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
5: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: GAFM
0: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: दादु भरसा चांडिया बिरादरी के बिंदर में खूनी तकरार बीहर भड़की पो बिन भायरन सूदो अठ जणा कतल इलाको जंग जो मैदान बणल पुलिस वक्त ते सूरत हाल कंट्रोल करण में नाकाम पुलिस जे वक्त ते न पहुंचण सबब वधिक जानी नुकसान थियो गोठ दानो चांडियो में धुरिन में फायरिंग सबब अकबर चांडियो धुरजा मंजूर सुल्तान वतनी बचल हाजन ए फिदा चांडियो कतल खान मोहम्मद चांडियो धुरजा ब भायर दीदार ए गुलबार चांडियो मारजी वे अठई जणन जा लाश अस्पताल मुंतकिल इलाइके वासन जो चवण आए त इतलाह बावजूद पुलिस वाके वारे हंध न पहुती परे खां गोठ के कड़ो चाढ़ियो वियो चइन कलाकन खां पोए पुलिस सूरत हाल ते जाब्तो आंदो पुलिस वक्त ते पहुचिया त एॾो जानी नुकसान न थिया पुलिस जे नाल इहे सबब वॾो नुकसान थियो आहे। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ए मरियम नवाज सा आजाद कश्मीर के वजीर आजम इफ्तिखार गिलानी स्पीकर तारिक फारूक की मुलाकात शरीफ खानदान के टिन्हीं भातन इफ्तिखार गिलानी के आजाद कश्मीर के वजीर आजम थे वाधाई डिन्नी आजाद कश्मीर के वजीर आजम वजीर आजम शहबाज शरीफ ए नवाज शरीफ आडो सेहत तालीम ए बेन शोबन लाए सबक डीन जो मवासलाती मनसूबो शेयर कर। नायब वजीर आजम इसाक डार सरकारी दौरे ते इस्तंबुल पहुंची वयो परडेही ऑफिस मूजिब इस्तंबुल पहुंचण ते स्टाफ इंतजाम के डिप्टी चीफ ब्रिगेडियर जनरल नायब वजीर आजम की आज्ञा कई इसाक डार तुर्की में मुख्तलिफ़ सरकारी सरगर्मियों ए मुलाकातन में शिरकत कंदो। ईरानी सुप्रीम लीडर जे विचोभर जे मुल्कन खां अमेरिका ऐं इसराइल खिलाफ़ मुतहिद थियण जी अपील ईरानी सुप्रीम लीडर मुज़्तबा खामनाई पंहिंजे बयान में चयो आहे त इस्लामी क़ौमुनि जे मसइले जो हल कलमे जे इताद दोस्ती भलाई जी राह में सहकार करणु आहे। दुश्मन सॼी दुनिया जे मुस्लमाननि में वेशा पैदा करण जी कोशिश करे रहियो आहे। विचोभर जा मुल्क पंहिंजे हक़ीक़ी दुश्मन खे सुञाणण जा मनसूबा समुझनि ऐं मुक़ाबिलो कनि। पाकिस्तान तुर्की ऐं सऊदी गडि॒यल सलामती ऐं दिफ़ा लाइ मुतहद आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर जे अवाम खे को योम फतह जे मौक़े ते पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त 30 अगस्त गाज़ी मुस्तफ़ा तुर्क जे क़यादत में तारीख़ी फतह जो यादि ॾियारे थो। पाकिस्तान तुर्की अवाम सां गॾु जुरत ऐं क़ौमी अज़म जे फ़ख्र जोगे मीरास खे भेटा पेश कयूं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उमराह पहुची वियो। ज़रियन जो चवण आहे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात में मुल्क जी सियासी सूरताल ते ॻाल्हियूं थियूं। दुकीअ में गाॾी बारूदी सुरंग मां टकराइजी वई। 3 भाइर फोत 1 ज़ख़्मी। SSP जो चवण आहे त दुकीअ जे इलाइक़े लोनी कली बख़्तियार में गाॾी बारूदी सुरंग सां टकराइजण सबब 3 भाइर फोत थी विया, 1 ज़ख़्मी थी पियो। इतलाह ते पुलिस इलाइक़े खे घेरे में आणे सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। ईरानी सदर चयो आहे त इस्लामाबाद यादाश्त नामे ते अमल दरामद सां ॾुखियाईनि ते कंट्रोल करे सघिजे थो। मुआदे ते अमल करणु आसान अमरीका ऐं इसराइल खे खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करण सां रोके सघिजे थो। ईरान जंग नथो चाहे। नई धमकियुनि ऐं दबाउ सबब झुकंदो। कंहिं बि जारियत जो पूरी ताक़त सां जवाब ॾींदासीं। आलमी बिरादरी खिते में शिकताण घटाइण में किरदार अदा करे। नवनि इलाइक़ाई मुआहिदनि ऐं इंतज़ामनि सां पाड़ेसरी मुस्लिम मुल्कनि जो पंहिंजे सलाहियतनि ते भाण जी शुरूआति थी चुकी आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाक़िर कालिबाब चयो आहे त इलाइक़ाई सिक्योरिटी मुस्लिम मुल्क विच में सहकार ऐं ख़्वाहिश जी बुनियाद ते थियणु घुर्जे। मुस्लिम पाड़ेसरीन खे दुश्मन बदिरां सहकार ऐं भाईचारो इख़्तियार करणु घुर्जे। हैदराबाद में गुम थियल नौजवाननि जे बाज़ियाबी लाइ सिविल सोसाइटी जी एहतजाजी रैली ताज जोयो प्रिया कुमारी ऐं फताह चन ऐं ॿियनि जी अॻुवाणीअ में एहतजाजी रैली कढी वई। अॻवाणनि चयो त गुम थियलनि जी वाकियनि में वाद सबब अवाम में बेचैनी ऐं खौफ़ वधी रहियो आहे। गुम थियल नौजवाननि खे फौरी तौर बाज़ियाब करायो वञे। सखर में मास्तरीअ लाइ IBA टेस्ट पास कंदड़ उमेदवारनि जो ऑफर आर्डर न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज। PST ऐं JST टेस्ट पास कंदड़ उमेदवारनि जो चवण आहे त टेस्ट पास कंदे 5 साल थी विया आहिनि पर अञा ताईं ऑफर आर्डर न पिया ॾिना वञनि। ऑफर आर्डर जारी करे परेशानी ख़तम कई वञे। पिशावर खां कोटिया वेंदड़ जाफर एक्सप्रेस के जेकमाबाद स्टेशन ते रोकियो वियो। सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलण सबब रेलगाड़ी के बलोचिस्तान न छॾी वियो। रेलवे स्टेशन ते सहूलियतूं न हुजण सबब मुसाफ़िरनि खे सख़्त ॾुखियाई दरपेश अची रहियूं आहिनि। जाफर एक्सप्रेस खे रोकण बाद मुसाफ़िर कोचिस ऐं वेगन ज़रिए कोटिया रवाना थी विया। मुसाफ़िरनि खे जेकमाबाद खां कोटिया जो किरायो वापसि कयो वियो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबब न बणंदो।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻारायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
9: खुशखबरी खुश।

0: मालूम आदला है मोबाइल नंबर 0371800392
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाण लाए
2: असन जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हन नंबर ते राबतो कंदा
1: 0331252578
2: जी हाँ बुड़ी 331 5576
1: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तेंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असां वट अल्लाह ताला जी एक वड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ये बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लगान लाजमी आए।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3141-200। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
4: खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

अमेरिका इसराइल ख़िलाफ़ मुतहद करण जी अपील। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई पंहिंजे बयान में चयो आहे त इस्लामी क़ौमनि जे मसलनि जो हल कलमे जी इतिहाद दोस्ती ऐं भलाई जी राह में सरकार करण में आहे। दुश्मन सॼी दुनिया जे मुसलमाननि में वेझा पैदा करण जी कोशिश करे रहियो आहे। उचोभर जा मुल्क पंहिंजी हक़ीक़ी दुश्मन खे सुञाणनि, हिननि जा मनसूबा समझनि ऐं मुक़ाबिलो कनि। पाकिस्तान, तुर्की ऐं सऊदी गॾियल सलामती ऐं दिफ़ा लाइ मुतहिद आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो तुर्किया जे सदर ऐं अवाम खे योम फ़तह ते मौके ते पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो 3 अगस्त गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जी क़यादत में तारीख़ी फ़तह जी यादि ॾियारे थो। पाकिस्तान तुर्की अवाम सां गॾु जुरत ऐं क़ौमी अज़म जे फ़ख़्र जोगी मिरास खे भेटा पेश कनि था।

0: जंहिंमें गाॾी बारूदी सुरंग सां टकराइजी वई। टे फायर फोर्थ हिकु ज़ख़्मी। एसपी जो चवणु आहे त डुके जे इलाइक़े लूनी कली बख़्तियार में गाॾी बारूदी सुरंग सां टकराइजण सबब टे फायर फोर्थ थी विया ऐं हिकु ज़ख़्मी थी पियो। इतलाउ ते पुलिस इलाइक़े खे घेरे में आणे सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। ईरानी सदर चयो आहे इस्लामाबाद यादाश्तनामे ते अमल दरामद सां ॾुखियाईनि ते कंट्रोल करे सघिजे थो। माहिदे ते अमल करण सां अमरीका ऐं इसराइल खे ख़िते में अदम इस्तेहकाम पैदा करण सां रोके सघिजे थो। जंग नथो चाहे ऐं नई धमकियुनि ऐं दबाउ सबब झुकंदो। कंहिं बि जारियत जो पूरी ताक़त सां जवाब ॾींदासीं। आलमी बिरादरी ख़िते में चिकताण घटाइण में किरदार अदा करे। नवनि इलाक़ाई मुआहिदनि ऐं इंतज़ाम सां पाड़ेसरी मुस्लिम मुल्कनि जो पंहिंजी सलाहियतनि ते भरण जी शुरूआत थी चुकी आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालीबाफ चयो आहे त इलाक़ाई सिक्योरिटी मुस्लिम मुल्कनि विच में सहकार ऐं ख़्वाहिशनि जी बुनियाद ते थियणु घुर्जे। मुस्लिम पाड़ेसरियुनि खे दुश्मनियुनि बदिरां सहकार ऐं भाईचारो अख़्तियार करणु घुर्जे। हैदराबाद में गुम थियल नौजवाननि जी बाज़ियाबी लाइ सिविल सोसाइटी जी रैली। ताज जोयो, सलीम जरवार, पुष्पा कुमारी ऐं फता चना ॿिया शरीक। अख़बारनि चयो त गुम थियण जे वाकियनि में वाद सबब अवाम में बेचैनी ऐं ख़ौफ़ वधी रहियो आहे। गुम थियल नौजवाननि खे फौरी तौर बाज़ियाब करायो वञे। सखर में मास्तरी लाइ आई पी ए टेस्ट पास कंदड़ उम्मीदवारनि जो ऑफर आर्डर न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज। पी एस टी ऐं जे एस टी ते टेस्ट पास कंदड़ उम्मीदवारनि जो चवणु आहे त टेस्ट पास कंदे 5 साल थी विया आहिनि, पर अञा ताईं ऑफर आर्डर न पिया ॾिना वञनि। ऑफर आर्डर जारी करे परेशानी ख़तम कई वञे। पिशावर खां कोयटा वेंदड़ जाफर एक्सप्रेस खे जेकबाद स्टेशन ते रोकियो वियो। सिक्योरिटी क्लीयरेंस न मिलण सबब रेलगाॾी खे बलूचिस्तान न छॾियो वियो। रेलवे स्टेशन ते सहूलियतूं न हुजण सबब मुसाफ़िरनि खे सख़्त ॾुखियाईयूं। जाफर एक्सप्रेस खे रोकण बाद मुसाफ़िर कोचिस ऐं वेगननि ज़रिए कोयटा रवाना थी विया। मुसाफ़िरनि खे जेकबाद खां कोयटा जो किरायो वापसि कयो वियो। कुलवर सां भाड़ी मच्छीअ जे तलाउ में ॿुॾी फोत। घड़ी हसन सरकी में 5 वरियुनि जी सभा सरकी। मच्छी जे तलाउ में ॿुॾी फोत, मड़ घर पहुचण ते कोरा।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली। खुशख़बरी,
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल।

0: शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली। छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबितो कंदा।
1: 03132525786।
2: जी हा, 2315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वाडिये मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

रहे हो तो आवाज भी सिर्फी है। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राति जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर मिले।
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असां खे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 साल में घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे सभिनी खे बूस्टर डोज वग़ैरह।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान तुर्की ए सऊदी कमेटी इजलास सुभाणे इस्तांबुल में थींदो। तुर्क परदेही ऑफिस जे ज़रिए मौजूद इजलास में तिन्ही मुल्कनि जूं आला अख़्तियारियूं शिरकत कंदियूं। नायब वज़ीर आज़म सागर बि इस्तांबुल पहुची वियो। वज़ीर आज़म जे पासे तुर्किया जे सदर ऐं अवाम खे योम फ़तह ते मौके ते पैगाम ॾींदे चयो आहे त पाकिस्तान ऐं तुर्किया जी स्ट्रेटेजिक भाईवारी गॾियल ख़ुशहाली ऐं सिक्योरिटी जी ज़मीन आहे। मखे मुआदे स्ट्रेटेजिक भाईचारे जी तस्दीक कई। ही मुआदो पाकिस्तान ऐं तुर्किया खे सऊदी अरब सां गॾु मज़बूतीअ सां जोड़े थो। 6 अगस्त गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जी क़यादत में तारीख़ी फतह जी यादि ॾियारे थो। पाकिस्तान तुर्की अवाम सां गॾु जुरत ऐं क़ौमी अज़म जे फ़ख़्र जोगी मिरास खे भेटा पेश करे थो।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबब न बणंदो।
1: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻारायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03312525786।
2: जी हाँ, 2315525786
7: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: ईरान की सकाफत से गुंदा हुआ। आवाज की डोर से बंधा हुआ।
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान तुर्की ऐं सऊदी कमेटी जो इजलास सुभाणे इस्तंबोल में थींदो। तुर्क परडे॒ही ऑफिस जे ज़रियनि मूजिब इजलास में टिन्ही मुल्कनि जूं आला अख़्तियारियूं शिरकत कंदियूं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बि इस्तंबोल पहुची वियो। वज़ीर आज़म चयो तुर्किया जे सदर ऐं अवाम खे योम फताह जे मौक़े ते पैगाम ॾींदे चयो त पाकिस्तान ऐं तुर्किया जी स्ट्रेटेजिक भाईवारी गडि॒यल खु़शहाली ऐं सिक्योरिटी जी ज़मीन आहे। मके मुआदे स्ट्रेटेजिक भाईचारे जी तसदीक कई। ही मुआदो पाकिस्तान ऐं तुर्किया खे सऊदी अरब सां गॾु मज़बूती सां जोड़े थो। 10 अगस्त गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जी क़यादत में तारीख़ी फतह जी यादि ॾियारे थो। पाकिस्तान तुर्की अवाम सां गॾु जुरत ऐं क़ौमी अज़म जे फ़ख़्र जोगी मीरास खे भेटा पेश करे थो।

अधु भरसां चांडे बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में खूनी तकरार ॿीहर भड़की पियो। ॿिनि भाइरनि सुधो जहिड़ा कतल इलाइक़ो जंग जो मैदान बणियल। पुलिस वक़्त ते सूरत हाल कंट्रोल करण में नाकाम। पुलिस जे वक़्त ते न पहुचण सबबि वधीक जानी नुक़सान थियो। ॻोठ दानू चांडियो में धुरियन विच में फायरिंग सबबि अकबर चांडियो, तुलजा मंजूर, सुल्तान वतनी, बचल हाजन ऐं फिता चांडियो कतल। खान मोहम्मद चांडियो, तुलजा बफ़ायर, दीदार ऐं गुलबार चांडियो मारिजी विया। अठई ॼणनि जा लाश वारिसनि हवाले। इलाइक़े वासियुनि जो चवण आहे त इतलाउ बावजूदि पुलिस वाकिए वारे हंधि न पहुती। परे खां ॻोठ खे कड़ो चाढ़ियो वियो। चार कलाकनि खां पोइ पुलिस सूरत हाल ते ज़ाब्तो आंदो। पुलिस वक़्त ते पहुचे हा त एॾो जानी नुक़सान न थिए हा। पुलिस जी नाहिली सबबि वॾो नुक़सान थियो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलन।

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अवां जे पंहिंजे शहर माटली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली। छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125252786।
2: जी हा, 2315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर मानू जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन दहन साल तीन छो थी डी वे तो जो अस बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उनके अलावा असानी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज तक वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें उम्र के पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके तो रेशो दहन साल का घट आ तेज असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे
2: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलन

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

8 run 3 विकेट पे पाकिस्तान का स्कोर है एंड दे आर रिक्वायरिंग अनदर 281 रन फॉर द विक्ट्री. लेट्स सी कि होगा क्या और पाकिस्तान किस अंदाज में कम बैक करने की कोशिश तो कर रहा है. अगर बिलफर्ज ये दोनों मिलकर मजीद कोई 100-150 रन बना लेते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग मामला हो सकते हैं एंड इंग्लैंड कैन फील दैट कैन फील देम सेल्व्स अंडर प्रेशर. पहले इस वक्त एटकिंसन ऑपरेट कर रहे हैं 24 रन देकर उन्होंने कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया और रॉबिन्सन ने 9 ओवरों में 4 मेडन करके 15 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए. पर बात ये हो रही थी कि हम बांग्लादेश जाते हैं वहां हार जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहां हार जाते हैं, हम इंग्लैंड जाते हैं वहां हार जाते हैं, हम वेस्ट इंडीज जाते हैं वहां भी हार जाते हैं, बुरी तरह हार जाते हैं, 200 रन भी चेज नहीं हो पाते हमसे. इसी तरह वेस्ट इंडीज वहां आती है पाकिस्तान हमें हरा देती है, बांग्लादेश वहां आती है हमें हरा देती है, ऑस्ट्रेलिया आती है हराती है. ये टीम पाकिस्तान की खास तौर पर टेस्ट टीम को हुआ क्या है, क्या वो टैलेंट क्या वो प्लेयर ही खत्म हो गए हैं या सही प्लेयरों को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा. अब अभी मेरा सवाल बनता है क्या अजान अवैस इज द राइट चॉइस, क्या जोफर आर्चर स्ट्रॉमिंग इन एट अफेयर ऑफ 145-148 94 मील फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करते मैंने आज उनको देखा है टेलीविजन में और साथ साथ जो उनके दूसरे कुछ बॉलर हैं उनकी भी पेस अच्छी खासी है. आज दूसरा ये कि एक ऐसा ओपनर जो भी बिल्कुल नया है उसको जोफ्रा आर्चर के सामने और रॉबिन्सन के और जोस्टन के सामने थ्रो करने वाली बात नहीं और टफ है. इसी तरह आप जब इंग्लैंड आए हैं जहां गेम पेस भी आपको चाहिए और आपको क्वालिटी सीम और स्विंग करना भी आप जानते हो तो वहां नसीम शाह अच्छी चॉइस हो सकते थे, उनको दौरे पे नहीं लाया गया. शाहीन शाफी कुड बी अ गुड चॉइस, ठीक है वो 22 हारिस राउ पर वो भी नाकाम ही रहते हैं मगर टेस्ट मैच में लाने की मैं समझ रहा हूँ एटलीस्ट एक विकेट टेकिंग ऑप्शन तो बनता है ना, तो उनको भी नहीं खिलाया गया उनको भी नहीं लाया गया. तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ है. मैं नहीं कहता कि हम जीत ही जाते हैं, हम इंग्लैंड को वाइट वॉश कर देते मगर शायद पहला टेस्ट इस तरह से ना हारते ना वेस्ट इंडीज में ना हेडिंगली लीड्स में इंग्लैंड में. इसके अलावा आप देखें क्या कुछ नहीं हो रहा, आकिब जावेद आते हैं कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, गैरी क्रिस्टन भी एक तरह से टीम से गायब हो गए और भी बहुत सारे लोग जो थे, तो आई मीन के कुछ कुछ कुछ अच्छा चल नहीं रहा है. भले आप अपने आप को कितना भी तसल्ली दें बट देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग रॉन्ग. अच्छा बाबर आजम हैज बीन गिवन द कैप्टनसी अगेन वेस्ट इंडीज के टूर पर. मैं समझता हूँ ये थोड़ा हार्श है बाबर आजम लार्ज नंबर ऑफ फैंस जो यकीन उन्होंने मेरी बात पसंद नहीं आएगी मगर बाबर आजम को मैं समझता हूँ शॉर्ट शायद कैप्टनसी एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए. व्हेन ही वाज टेकन ऑफ द कैप्टनसी फिर उन्हें जिस तरह से वर्ल्ड कप में एट टाइम्स ड्रॉप भी किया गया 2020 के वर्ल्ड कप में उनका नंबर भी चेंज किया गया एंड नाउ ही हैज बीन गिवन द कैप्टनसी बैक. तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बड़ा जिसे कहना चाहिए गमनाक चीज है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर मी कि क्यों व्हाई डिड ही एक्सेप्ट द कैप्टनसी अगेन. और फिर जब और अगर आपने कैप्टनसी एक्सेप्ट किया तो मैं समझू फिर आपके अंदर इतनी ताकत इतनी कुव्वत इतनी गट्स होने चाहिए थे कि आप अपनी स्ट्रांगेस्ट साइड लेके जाते, आप अपनी जो टीम आप चाहते थे जो डिजर्विंग प्लेयर थे उनको लेके जाते. मेरा ख्याल है कि आकिब जावेद इज मेकिंग लॉट ऑफ बैड डिसीजन एज वेल. आई डोंट वॉन्ट टू बी वेरी क्रिटिसाइजिंग, मैं कोई क्रिटिसाइज करने वाला आदमी नहीं, मैंने पहले भी बताया और आप मुझे जानते भी हैं, रेडियो कॉमेंट्री भी आप सुनते हैं, मेरी टीवी पे भी देखते होंगे और साथ साथ मुझे आप प्रोग्राम में भी इतने अच्छे से सुन रहे हैं. मैं कोई क्रिटिसाइज करने वाला बंदा नहीं हूं मगर यार मैं समझता हूँ अजान अवैस को किसी तरह लेके नहीं जाना चाहिए. जो हमारी पहली टीम है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ जब लॉर्ड्स में 96 में जीते तो ओपनर सईद अनवर थे, वो सब अच्छी खासी सेंचुरियां बना चुके थे और तीसरे टेस्ट में ओवल में उन्होंने सेंचुरी बना भी डाली थी और लॉर्ड्स टेस्ट में इंजमाम ने सेंचुरी बनाई थी उस वक्त. तो इसके अलावा 93 में भी हमारे पास अच्छे ओपनर आमिर सोहेल वगैरह मौजूद थे
तो कहीं ना कहीं अब ऐसी ओपनर इंग्लैंड में ऑलवेज नई बॉल के साथ बॉल हुक अराउंड इट जेट्स बैक इन टूवर्ड्स दी बैटर्स एट टाइम्स गेंद जो है बाकायदा स्विंग और सीम होती है और इंग्लैंड के तकरीबन जो भी बॉलर रहते हैं जो भी उनका पेस अटैक होता है वो बहुत अच्छे से जानता है कि गेंद को स्विंग और सीम किस तरह करना है क्योंकि दे हैव नो स्टुअर्ट ब्रॉड नाउ दे हैव नो एंडरसन नाउ मगर मैं समझता हूं कि रॉबिन्सन ने और आर्चर ने उनके पेस अटैक को बहुत अच्छे अंदाज में संभाल लिया है दे बोथ आर गुड बॉलर्स और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये इस चीज का ध्यान रखना होगा इस चीज का ख्याल रखना होगा कि ऐसी अजान अवैस को शायद मेरे नजदीक नहीं लेके आई होप 47 रन भी उन्होंने किए हैं आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे लेकिन कभी कभार हो ये जाता है कि ज्यादती हो जाती है ऐसे खिलाड़ियों के साथ जिन्हें शायद अगर आप पाकिस्तान में किसी और टीम के खिलाफ किसी और कंडीशन में मौका देते तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती है ये मेरा कहने का मकसद दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बहरहाल लेट्स सेट बैक टू दी लॉर्ड्स और लॉर्ड्स में अभी मैं आपको सूरत हाल बता देता हूं कि पाकिस्तान हैव मूव्ड अप टू 111 फॉर 4 ओहो शान मसूद इज गॉन आउट हो गए शान मसूद माय गॉड ये कोई अच्छी खबर नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एंड लेट्स सी कि मैं उनकी डिसमिसल आपको बता दूं कि हु गॉट इज विकेट शान मसूद एलबीडब्ल्यू बोल्ड रॉबिन्सन 26 रन बनाए 72 गेंदों पे 2 चौके लगाए और नेल्सन पे विकेट गिर गई है जनाब 111 पे पाकिस्तान की चौथी एंड अगेन पाकिस्तान नाउ इन डायर स्ट्रेट्स अगेन पाकिस्तान इज इन डीप ट्रबल अब अकेले साउथ शकील पे कुछ उम्मीद की जा सकती है या फिर आप देखते हैं मोहम्मद रिजवान जो बैटिंग करने के लिए आए कैनी प्ले अब बिग इनिंग्स हेयर क्या वो यहाँ कोई बड़ी इनिंग्स खेल सकेगी उसके बाद इमामुल हक स्टिल कंफर्म नहीं है कि वो बैटिंग करने के लिए आ भी सकेंगे नहीं क्या कंडीशन है उनकी क्या नहीं देन यू विल डाउन टू योर बॉलर्स जिसमें अली उस्मान का बहुत तजर्बा नहीं बैटिंग का खुर्रम शहजाद का भी नहीं मोहम्मद अब्बास का भी नहीं मोहम्मद अली का भी नहीं एंड यू आर स्टिल नीडिंग 278 रन फॉर द विक्ट्री तो अब तो मेरा ख्याल है कि कुछ मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान को फॉर लेट्स सी वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट के जो भी सूरत हाल बनती है अगले प्रोग्राम के चंक में अगले प्रोग्राम के हिस्से में भी जो कि आएगा इस ब्रेक के बाद उसमें आपसे शेयर करेंगे इस वक्त हम प्रोग्राम में दूसरे ब्रेक की जाने बढ़ गए हैं आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक देन विल बी राइट बैक ऑन GAFM रेडियो नेटवर्क जहां पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंडअप मेरे आपके अपने मेजबान राणा अशफाक के साथ लेट्स गो एंड टेक अ ब्रेक

वेलकम बैक, वेलकम बैक। प्रोग्राम आपका अपना स्पोर्ट्स राउंड अप। मैं आपका अपना मेजबान राणा शफाक और ये है जीए एफएम रेडियो नेटवर्क, सिंध भर में एक ही आवाज। और आप और मेरा साथ होता है संडे की शाम 7 से लेकर 8 बजे तक। प्रोग्राम के हम आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं और आखिरी मरहले में पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान का स्कोर पहुंच गया है 115 रन 4 विकेट के नुकसान पर। साउथ शील्ड स्टिल होल्डिंग द फोर्ट फॉर पाकिस्तान एंड रिजवान द विकेट कीपर बैटर इज अलोंग साइड हिम। जो दुबई में मुकाबला जारी है इंडियन वुमेन और थाईलैंड वुमेन के दरमियान, उसमें इंडिया की टीम का स्कोर है 64 एक विकेट के नुकसान पर, जबकि खेल जारी है छठे ओवर का। आजकल वुमेन के मैच भी बड़े तवातर के साथ होते हैं इंटरनेशनल गेम्स, और इंडिया की टीम भी एक उभरती हुई ताकत है जहां तक वुमेन का टीम्स का ताल्लुक है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज यकीनन अच्छी टीम्स हैं, लेकिन इंडिया की टीम बहुत तगड़ी अब हो गई है। रावाल खेल रही है 12 रन पे 8 गेंदे के लिए, एक चौका एक छक्का लगाकर, और शिफाली वर्मा ने 33 रन बनाए हैं 17 गेंदों में, 5 चौके और एक छक्का लगाया है। थाईलैंड वुमेन की जाहिर है कि बहुत अच्छी हिस्ट्री नहीं है जहां तक जीतने का ताल्लुक है। इंडिया की टीम यहां हॉट फेवरेट है, इस बात में कोई शक नहीं, और देखना यह होगा कि इंडिया की टीम कितना बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा करेगी और फिर थाई वुमेन किस तरह से उसका ताकुब करने की कोशिश करेंगी। ये तो एक मैच का हमने जिक्र किया जनाब। इसके अलावा एक लीग भी जारी है, 8वां मैच है उस लीग का, जो कि डीबीजी और ईसी के दरमियान खेला जा रहा है, और ये यूरोपियन टी20 लीग है। 15 ओवर के बाद बना लिए हैं पहले बैटिंग करने वाली साइड डीबीजी ने 89 रन 7 विकेट के नुकसान पर। उसका स्कोर कार्ड जरा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इन्होंने जी जनाब पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, इनका पूरा नाम है डबलिन गार्डियंस। जेम्स विंस बना सके 40 रन, बड़ी अच्छी बैटिंग की, 30 गेंदों में 5 चौके एक छक्का लगाया। मोहम्मद वसीम 6 रन बना पाए। हैरी टेक्टर आयरलैंड के खिलाड़ी, उन्होंने 4 रन बनाए। डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, उन्होंने 3 रन बनाए। बेन कार्लटेज ने 4 रन स्कोर किए। संजय कृष्णामूर्ति 24 रन पे नॉट आउट है, एक चौका एक छक्का लगाकर। जॉर्ज ट्रॉकवेल ने 2 रन बना रखे हैं 3 गेंदों पर। रविचंद्रन अश्विन जो कि टीम के कैप्टन है, उन्होंने 8 रन बनाए 12 गेंदों पर। और क्रिस वुड नॉट आउट है 1 रन पर, जबकि 3 एक्स्ट्रा हैं और 8 विकेट पे स्कोर है 95, जबकि 16वें ओवर का खेल जारी है। पहली विकेट 21 पे गिरी, मोहम्मद वसीम आउट हुए। दूसरी 45 पे हैरी टेक्टर आउट हुए। तीसरी 54 पे डेरिल मिचेल। चौथी 60 पे जेम्स विंस। पांचवी 61 पे गिरी जब आउट हुए थे कार्लटेस। छठी विकेट 65 पे गिरी जब जॉर्ज टॉकरेल आउट हुए। सातवीं विकेट 83 पे गिरी जब अश्विन आउट हुए। और आठवीं विकेट 95 पे गिरी जब संजय कृष्णामूर्ति आउट हुए। दो ओवर के ट्रेंट बोल्ट ने, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, 15 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया। टॉम करन इंग्लैंड के 3 ओवर 21 रन एक विकेट। मार्क वॉक ने 4 ओवर किए 28 रन कोई विकेट नहीं। जैक जारवे से 1 ओवर 5 रन एक विकेट। मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर 3 ओवर 10 रन 4 विकेट। जे जे स्मिथ्स 2 से 2 ओवर 15 रन और 1 विकेट हासिल है। तो डबलिन गार्डियंस पूरी तरह से दबाव का शिकार हैं और देखते हैं कि 20 ओवर पूरे खेल भी पाते हैं कि नहीं, और अगर खेल पाते हैं तो कितने रन बना पाते हैं। नेक्स्ट न्यूज जहां तक इस लीग का ताल्लुक है, लेट्स गेट बैक टू द लॉर्ड्स। पाकिस्तान की एक और विकेट जनाब गिर गई है। दे आर नाउ 5 डाउन 415 और अब मैं समझता हूं कि आई थिंक इट इज गेम ओवर फॉर देम कहना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान द लेटेस्ट डिसमिसल। मोहम्मद रिजवान ने जो है 1 रन बनाए 9 गेंदों पर, कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा पाए जनाब। और रॉबिनसन ने एक और खिलाड़ी आउट कर दिया है। तो अब क्या किया जाए जनाब, कैसे किया जाए, कौन करे, कुछ समझ से बाहर है। पाकिस्तान की उम्मीदें टूट गई हैं, दूसरे टेस्ट मैच की हजीमत से दो चार हुआ चाहते हैं वो, सूरत हाल उनके हक में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड पाकिस्तान जिसे कहना चाहिए हार की वर्ष पे,
हार के बहाने पे पहुंच गया। फिर वही बात, दिल दुखाने वाली बातें हैं। क्या कहा जाए, क्या ना कहा जाए, ना चाहते हुए भी क्रिटिसिज्म का दिल करता है। कैसी कैसी टीम्स को हमने इंग्लैंड में डिस्प्ले करते देखा है, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सईद अनवर, आमिर सोहेल, जावेद मियांदाद, रबीज राजा, सलीम मलिक, यूनुस, इंजमामुल हक की मुझे याद है अब भी, ट्रेंट ब्रिज में 2001 में एक बहुत ही तेज तर्रार सेंचुरी, 2006 में मोहम्मद यूसुफ की डबल सेंचुरी, सेंचुरीज 2000, क्या क्या क्या याद किया जाए। लेकिन यहाँ अब ये कि कोई खिलाड़ी पाकिस्तान का फाइट करने के लिए तैयार नहीं, कोई खिलाड़ी टफ टाइम देने के लिए तैयार नहीं किसी भी बॉलर को, कोई बॉलर टफ टाइम देने के लिए तैयार नहीं किसी भी बल्लेबाज को। अली उस्मान आ गए तो इससे लग ही रहा है कि मामूल हक स्टिल उस कंडीशन में नहीं है कि वो बैटिंग के लिए आ सकें। शायद कोई बहुत ही जरूरत महसूस हुई तो शायद आए, अदरवाइज अब उनके आने के चांसेस ब्लीक हैं क्योंकि डिडंट कम आउट टू बैट इन द फर्स्ट इनिंग। हालांकि बड़ी तनकीद की नासिर हुसैन वगैरह ने उनसे कि उनको आना चाहिए तो बैटिंग करने के लिए, उनकी कलाई शायद जख्मी है। सलीम मलिक ने टूटे बाजू के साथ टेस्ट मैच बचाया हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने आपके वॉक्स शायद बैटिंग करने के लिए आए थे, वुड बैटिंग करने के लिए आए थे अभी पिछले ही साल इंग्लैंड के लिए। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता है, मगर हमारे अब क्या कहा जाए, क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है। बार इंग्लैंड की टीम हुई है, दूसरा मुसलसल टेस्ट मैच करीब है, होपफुली कोई अच्छा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई अच्छी खबर इस टेस्ट मैच में अच्छी है। बहरहाल दूसरा हमारे पास भी अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगता है, आप खत लिख सकते हैं GFM रेडियो पे, और साथ साथ बता भी सकते हैं, फेसबुक पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, व्यूज में आप फोन करके भी हमारे ड्यूटी ऑफिसर्स को या जो भी मौजूद है उनको बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है। किसी हवाले से आप कोई बातचीत करना चाहें, किसी खिलाड़ी से उसके हवाले से सुनना चाहें बातचीत, वो भी आपके लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि शेयर की जाए। फाइनल इस वक्त मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान।

0: की हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
2: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे माहा गुलाब खान बेड़।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकदा सिंध में सजा ऐं जज़ान आहे। पुलिस पाण मुरादो आज़ाद कराए रही आहे। सुप्रीम कोर्ट पारां आईजी तलब। इस्लामाबाद जे पिंस अस्पताल में बाहि लॻण वारे वाक़िए खां पोइ कराची जे वॾनि सरकारी अस्पतालुनि में फायर अलार्म सिस्टम न हुजण जो इंकशाफ़। सिंध जे 63 सब रजिस्ट्रारनि पारां प्रोमोशन न वठण वारे मामले जो वॾे वज़ीर नोटिस वठी वरितो। सिंध असेंबली नवनि सूबनि ऐं यूनिटनि जे क़याम बाबति बहस जे लाइ रिथ मंज़ूर करे वरिती। सूमर ते बहस कयो वेंदो। जामशोरे जी न्याणी दिया अनिल पाटिया जी तारीख़ी इल्मी कामयाबी पाकिस्तान ऐं सिंध जे लाइ फ़ख्र जो बाहिस। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध जे अस्पतालुनि लाइ बि जदीद फायर सेफ्टी निज़ाम जी ज़रूरत। सुप्रीम कोर्ट कतल जा केस दाखिल थियण में देर ऐं सिंध में पुलिसनि जे मजमूई सूरत हाल ते सख़्त कावड़ जो इज़हार कंदे आईजी सिंध खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। जस्टिस हाशिम काकड़ जे सरबराही में 3 रुकनी बेंच सखर जेल में क़ैद हिकु जवाबदार जी जेल पिटीशन ते ॿुधणी कई। केस खैरपुर ज़िले जे तालुके मीरवाह में पेश आयल कतल जे वाके सां लाॻापियल आहे, जंहिं में डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन जज जवाबदार नियाज़ मोहम्मद खे मौत जी सज़ा ॿुधाई हुई, जॾहिं त सिंध हाई कोर्ट सखर जे सर्किट बेंच पिण उहा सज़ा बरक़रार रखी हुई। ॿुधणीअ दौरान जस्टिस हाशिम काकड़ कतल जा केस दाख़िल थियण में देर ऐं पुलिस जे किरदार ते सख़्त रिमार्क्स ॾींदे चयो त ॿुधणीअ हेठि केसनि में कतल जे वाके खां पोइ ॿिनि ॾींहनि बाद FIR दाख़िल कई वई। केतिरनि ई केसनि में पुलिस केस दाख़िल करण खां बि पासो करे छॾी। जस्टिस हाशिम काकड़ चयो त सिंध में सज़ा ऐं जज़ा जो निज़ाम ई न आहे। सिंध पुलिस पाण माण्हुनि खे बरी कराइण जो सबब बणजी रही आहे। अहिड़े तरीक़े सां जानवरनि खे बि नथो मारियो वञे। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर रिमार्क्स ॾींदे चयो त सखर ऐं लाड़काणे जी सूरतहाल इंतिहाई ख़राब आहे। सुप्रीम कोर्ट मामले जी संगीनीअ खे नज़र में रखंदे आईजी सिंध खां अलावा एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, DIG सखर ऐं SSP खेरपुर खे पिण तलब करे वरितो। अदालत वकीलनि खे केस जी वधीक तयारी करण जी हिदायत कंदे ॿुधणी मुलतवी करे छॾी। अदालत लाॻापियल इख़्तियारनि खे ईंदड़ ॿुधणीअ ते सिंध में कतल जे दाख़िल केसनि, जांच ऐं पुलिसनि जी सूरतहाल बाबति जवाब ऐं वज़ाहत सां गॾु पेश थियण जी हिदायत कई। याद रहे त अक्री 14 में 9 जनवरी 2011 ते 15 सालनि जे निगर फहीद बालाजी खे क़त्ल कयो वियो हो। पुलिस ॿिनि ॾींहनि बाद क़त्ल जो केस दाख़िल कयो हो। तरी मीरवा जी अदालत जवाबदार नियाज़ मोहम्मद बालाजी खे मौत जी सज़ा ॿुधाई हुई। इस्लामाबाद जे वॾी सरकारी अस्पताल पिम्स में बाहि लॻण सबब मासूम ॿारनि जे फोत थियण वारे वाक़िए खां पोइ कराची जे वॾनि सरकारी अस्पतालुनि में पिण बाहि खां बचाव जे इंतज़ामनि जी खोट साम्हूं आई आहे। अस्पताल ज़रियनि मूजिबि KMC जे अब्बासी शहीद अस्पताल में सिर्फ़ 13 बाहि विसाइण वारा औज़ार मौजूदु आहिनि। अस्पताल में मौजूदु अमले खे फायर ड्रिल या बाहि खां बचाव बाबति बाक़ायदा तरबियत पिण न ॾिनी वई आहे, जॾहिं त अस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम बि लॻल न आहे ऐं हंगामी हालतुनि में ॿाहिरि निकिरण लाइ को मख़सूस रस्तो पिण मौजूदु न आहे। आबादी शहीद अस्पताल जे एमरजेंसी में रोज़ानो सवे, जॾहिं त OPD में 1000 खां वधीक मरीज़ अचनि था। आबादी शहीद अस्पताल जे ॿिनि जनरेटरनि मां हिक खे बेकअप ते रखियो वियो आहे। आबादी शहीद अस्पताल जे MS ॿुधायो त अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम बाबति वधीक क़दम खयां पिया वञनि। ॿिए तरफ़ जना अस्पताल जे हर वार्ड में बाहि विसाइण वारा औज़ार मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि मां केतिरा ई ख़राब ऐं गैर फ़ाल आहिनि। अस्पताल ज़रियनि मूजिबि जना अस्पताल में आख़िरी फायर ड्रिल 2017 में कई वई हुई। अस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम पिण लॻल न आहे। जना अस्पताल जी ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मूजिबि फायर फाइटिंग टीम जोड़ी आहे। होॾां सिविल अस्पताल में 180 बाहि विसाइण वारा औज़ार मौजूदु आहिनि। सिंध जे रेवन्यू खाते जे 63 सब रजिस्ट्रारनि तरफ़ां 15 ग्रेड मां 17 ग्रेड में प्रोमोशन वठण खां इनकार वारे मामले जो वॾे वज़ीर नोटिस वठी छॾियो। सिंध हुकूमत 17 ग्रेड में तरक़ी न वठण बाबति 63 सब रजिस्ट्रारनि पारां ॾिनल लिखत में दरख़्वास्तूं मंज़ूर करे वरितियूं हुयूं, जंहिं बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू पारां सदन दरख़्वास्तूं मंज़ूर कंदे नोटिफिकेशन पिण जारी कयो वियो हो। वॾे वज़ीर मामले जो नोटिस वठंदे ॼाण हासिल कई त रेवन्यू खाते में 17 ग्रेड जूं केतिरियूं होस्टूं ख़ाली आहिनि ऐं केतिरा सब रजिस्ट्रार प्रोमोशन वठण खां इनकार करे रहिया आहिनि। ज़रियनि मूजिबि ॼाणायल लिस्ट में उन्हनि सब रजिस्ट्रारनि जा बि नाला पिण मौजूदु आहिनि, जिन खे खाते बि बासर सम्झो वञे थो। रेवन्यू खाते जे 63 सब रजिस्ट्रारनि 15 ग्रेड मां 17 ग्रेड में प्रोमोशन वठण खां इनकार कयो हो, जंहिं ते सिंधु हुकूमत सदन तरक़ी न वठण बाबति दरख़्वास्तूं मंज़ूर करे वरितियूं आहिनि।
सिंधी असेंबली नवनि सूबनि में नवनि यूनिटनि जे क़याम बाबति थींदड़ ॻाल्हियुनि ते बहस जे लाइ रिथ मंज़ूर करे वरिती आहे। स्पीकर अवेस कादर जे सदारत हेठि सिंधी असेंबली जे इजलास में निसार एवन खोड़े ऐवान में रिथ पेश कई। पेश कयल रिथ में चयो वियो आहे त पाकिस्तान में नवनि सूबनि ऐं यूनिटनि जे हवाले सां बहस थी रही आहे, तंहिं करे मामूली ऐं कार्रवाई मुअतल करे हिन अहम मामले ते बहस कयो वञे। स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त सूमर ॾींहुं ॿ कलाक बहस कयो वेंदो। लॉ कॉलेज ऑफ लंडन मां ॾहनि मज़मूननि में कॉलेज जे तारीख़ में पहिरियों भेरो नुमाया पोज़ीशन माणे रिकॉर्ड क़ाइमु कंदड़ जामशोरो वासण शागिर्दियाणी पाकिस्तान ऐं सिंध जे फ़ख्र वारी नियाणी दिया अनिल पाटिया खे सभ खां पहिरियां गवर्नर पंजाब तर्फ़ां गवर्नर हाउस लाहौर मिशन शानदार इल्मी कामयाबी जे एतिराफ़ तौर एज़ाज़ सां नवाज़ण खां पोइ पाकिस्तान बार काउंसिल पारां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में जुमे जे ॾींहुं संदसि इल्मी क़ाबिलियत ऐं गैर मामूली कारकर्दगीअ खे साराहियो ऐं मंता ॾिनी वई आहे। उन खां पोइ मौजूद जजन पारां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बि खेसि एज़ाज़ सां नवाज़ियो वियो, जॾहिं पाकिस्तान जी वज़ारत कानून ऐं इंसाफ़ हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद पारां पिण संदसि गैर मामूली इल्मी कामयाबी जी मंता कंदे खेसि एज़ाज़ सां नवाज़ियो वियो आहे। बे तरफ़ सिंध जे साजावंद अफ़सोस जो इज़हार कंदे चयो आहे त अफ़सोस सां चवणो पवे थो त अञा ताईं संदसि पंहिंजे सूबे सिंध जे हुकूमत तरफ़ां या सिंध जे कंहिं बि कानूनी ऐं अक़लियती इदारनि बिरादरी तरफ़ां खेसि संदसि अहिड़ी शानदार अमली कामयाबीअ ते को बि सरकारी एज़ाज़ या मनता न ॾिनी वई आहे।

0: मानत
1: अवाजे पेंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहयो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी जी बोतल
1: 6 लीटर पानी जी बोतल ए बियो पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रहयो आहे।
0: उनका अलावा असा वट रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद आहे।
1: अवाजे एतमाद के कायम कंदे अवाजी जरूरत जो ख्याल रखदे
0: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी बिन तकरीबन लाए हाने असा सा राबतो करो। असा वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 0371800-3920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 0312-3401-287। ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी।
1: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ जीए FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए FM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबतो कंदा
1: 0331-2525-786।
3: जी हा 2315-2575-786
1: जीए FM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
6: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
2: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तव्हां ॿुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु, मां आहियां गुलाब खान भेण।

0: उगरायूं बुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हरा चर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638879 ऐं 0312-1401-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
1: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331-2525-786।
2: जी हा, 2315-2525-786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
2: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोटकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-33-842।
5: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जी बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।